0: Welcome back. Big verdict in Punjab ahead of the 2027 assembly elections. BJP's student wing, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, has won the Punjab University student elections, retaining the president's post for the second consecutive year. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's Ankit Bidhan polled over 3,100 votes, defeating the Aam Aadmi Party-backed Adil Brar by about 500 votes. The Congress-backed NSUI candidate finished third. But here's what makes this campus contest politically interesting. The ABVP victory comes after a last-minute support from the Students' Organization of India, the student wing of the Shiromani Akali Dal. I quickly want to cut across to Ankit Bidhan, the ABVP candidate who's won the Punjab University students' poll as president of the Punjab University. Ankit, welcome. Aapko jeet ki bahut badhai, Ankit. Is jeet ka shrey, is jeet ka credit, aap kisko dete hai? Aapki jeet kaise hui Punjab University ke chunavon mein?
1: ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे जेंजी की जीत है. मैं मेरी जीत का श्रेय जेंजी को देता हूं और जेंजी ने साबित कर दिया है कि जेंजी के दिल में एबीपी और मोदी जी हैं.
0: अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड दिस विक्ट्री बिलोंग्स टू जेन जी एंड देव बैक्ड यू. लेकिन अंकित, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जेन जी तो यहां सड़कों पर उतरी थी, जिस तरह उन्होंने संसद तक जाने का प्रयास किया. पेपर लीक उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था. तो आपको क्यों लगता है कि जेन जी आपको इस समय सपोर्ट कर रहे थे? किस मुद्दे पर उन्होंने आपको सपोर्ट किया?
1: नहीं, अगर आप कह रहे हैं जो हमारा मैंडेट आया है तो जैन जी ने साबित कर दिया कि उनके दिल में क्या है, वो किसको प्यार करते हैं, क्या है क्या नहीं है. तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई डरा दिया है, कुछ नहीं. उनके जैन जी के दिल में बहुत प्यार है.
0: अच्छा, लेकिन जैसा मैं पूछ रहा था आपसे कि जेन जी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है या नौकरी का मुद्दा है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं. तो आपके लिए भी ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा कि किस तरह से इन मुद्दों को और आगे उठाया जाए? और फिर क्या आप अपनी जीत, ये जो लास्ट मिनट अलायंस हुआ है शिरोमणि अकाली दल के स्टूडेंट विंग के साथ, आपको क्या लगता है कि ये एक तरह से टेस्ट बेड है आगे इस तरह की यूनिटी के लिए?
1: अगर आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो अभी जो पंजाब में पेपर लीक हुए थे तो सबसे पहला प्रोटेस्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एबीपी थी. उसमें मैं खुद भी था, चाहे हमने विधानसभा घेराव किया या फिर हमने उनका जो हरजोत बैंस एजुकेशन मिनिस्टर है उसके घर का घेराव करना हुआ. हमें चोटें भी आई हैं, वाटर कैनन हमारे ऊपर चलाए गए. तो जब भी ऐसी कोई बात आती है पेपर लीक की, सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाला संगठन हमारा संगठन होता है. अगर हम बात करें सोई पार्टी की, तो जो यूनिवर्सिटी में मैनिफेस्टो हमने बनाया था उसके ऊपर सोई पार्टी ने अपनी सहमति दिखाई और अपना समर्थन हमें दिया और एक हिंदू सिख भाईचारे की ये मिसाल कायम होकर आगे आया.
0: अच्छा, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हिंदू सिख भाईचारे की मिसाल है छात्र राजनीति में भी. लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर क्या यही एका एक बार फिर दिख सकता है पंजाब में? आपको किस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है? कैन द बीजेपी एंड द शिरोमणि अकाली दल, यू नो, वाज दिस द टेस्ट बेड, विल दे कम टुगेदर?
1: ये भविष्य के गर्भ में है. जो पंजाब की यूनिट है वो ये चीज तय करेगी.
0: ठीक ठीक. अच्छा, ये बताइए आपकी अब प्रायोरिटी क्या है कैंपस पर, क्योंकि कैंपस में नशे की भी एक बड़ी बात है. कैंपस में ही नहीं, पूरे पंजाब में एक बड़ा खतरा है. तो आपके लिए मेन इश्यूज क्या होंगे अब?
1: वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट हम इस बार की प्रायोरिटी रख के चल रहे हैं. रक्षाबंधन पर मैंने एक प्रॉमिस किया था कि कैंपस के अंदर 24/7 ई रिक्शा अवेलेबल रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी लड़कियां, उनके लिए.
0: ठीक.
1: और अगर बात करें हमारा जो मैनिफेस्टो हम लेकर आए हैं उसके अंदर, चाहे पीयू ऐप हम लेकर आए हैं, चाहे नॉन जेआरएस स्कॉलर्स उनके लिए एटलीस्ट 20,000 स्टाइपेंड हमने रखवाया है, और भी बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी चीजें हमारी हैं. तो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसे हम 100% कम्प्लीट करवा कर देंगे.
0: ठीक. अंकित, आप मेरे साथ जुड़े इंडिया फर्स्ट पर, बहुत बहुत धन्यवाद. सो दिस इज अ ग्लिम्प्स. Is this a glimpse of what we may see in Punjab in times ahead? That's a story we'll be tracking very closely. But that is all I have time for you on India First this evening. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.

0: दुनिया में हर जगह परेशानी है बिकॉज ऑफ गल्फ क्राइसिस, वॉर, हॉर्मुज की समस्या, तेल का आवागमन बाधित है, फिर भी भारत कहां है और बाकी लोग कहां हैं। तो आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूं भारत के इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच, समझदारी और उनकी लीडरशिप का, पूरे वित्त विभाग के प्रबंधन का, वित्त मंत्री जी का, सबों का अभिनंदन और देश का जो मनोबल रहा है।
1: जीडीपी कैसा बढ़ेगा मोदी को दिखता है, मोदी का चश्मा क्या है वो देखना पड़ेगा। मोदी कौन से चश्मे से देखते हैं? मोदी का अर्थशास्त्री है, मोदी का मनमोहन सिंह है, मोदी का पंडित नरसिंह राव है, आप मुझे बताइए। अगर जीडीपी बढ़ गया है तो महंगाई कैसी बढ़ रही है, रुपया कैसा नीचे गिर रहा है 89 रुपये तक, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 85 करोड़ 85 करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन में क्यों जीना पड़ रहा है, उसका जवाब भी देना चाहिए ना। जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, दिखना तो चाहिए ना क्या बढ़ जाए हो।

0: Okay, let's turn from there to a Chak De moment of sorts for Indian hockey at the FIH World Cup. Guess what? For the first time this weekend, the Indian women's team finished higher than the men's team at the World Cup hockey. The men came in eighth. The women came in a creditable fifth, their best ever showing since the first World Cup they participated in 1974. So it is a bit of a breakthrough moment for the Indian women's hockey team, which is why we've got three players from that team who've done the country proud. Vice captain Navneet Kaur, she was the highest scorer at the World Cup. Former captain and goalkeeper Savita Punia, who has played more than 300 times for India. And forward Lalrem Siami, who's been recently conferred with the Arjun Award. I will start with you, Lalrem Siami, because you are among the youngest players. Arjun Award milta hai, you finish fifth at the World Cup. Kuch log kahenge, where is the medal? We did not get a medal. Kyon aap hockey players ko la rahi hai? Tell us how you are feeling, finishing fifth, defeating Germany. Kaise lag raha hai, Lalrem? How do you feel?
1: Namaste, sir. हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा कि हम एज ए टीम हमने डिसाइड किया था कि इस बार हमें वर्ल्ड कप में हम मेडल लेकर जाने हैं, कि कोई भी मेडल है तो वो हमारा टारगेट था. बट हमने वो जो हमने एज ए टीम हमने डिसाइड किया वो पहुंच नहीं पाया, बट हमने फिफ्थ फिनिश किया है. एज ए टीम हमारा परफॉर्मेंस भी कॉन्फिडेंस भी हुआ है कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमने 52 इयर्स के बाद हमने ये अचीव किया.
0: But you're still waiting for the medal because you missed it out in the Tokyo Olympics. You came fourth, is bar fifth. Are we confident next time Olympics ya World Cup, we will get a medal?
1: Yes, sir, sure. इस बार भी तो पूरा confidence था हमें. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम मैच खेली थी, थोड़ा सा उसमें हम अपना बेस नहीं खेला, but as a team हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. सो उसी टाइम हम थोड़ा सा हमारा बेड डे था, उस वजह से हम सेमी पहुंच नहीं पाया. बट हमने एज ए टीम में डिसाइड किया कि जर्मन टीम में तो जैसे भी होगा हम जीत के ही हमें बाहर निकलना है, हमें फिफ्थ पे फिनिश करना है. सो एज ए टीम हमने जो डिसाइड किया हमने वो अचीव किया, वो बहुत बड़ा बात है. सो ऑफ कोर्स सर, नेक्स्ट टाइम वो पूरा कॉन्फिडेंस है.
0: वेल, फिनिशिंग फिफ्थ इज क्रेडिटेबल गिवन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. बट सविता पूनिया, नॉट ईजी to win a medal at the Olympics. बहुत बड़ा competition होता है. You only lost one match, एक ही game आप हारे Netherlands के सामने. You beat Germany, which is ranked higher than you. पर फिर भी वो कहीं ना कहीं होगा कि medal कब मिलेगा. We fell short, as I said, in the Olympics, finished fourth. Fifth is very creditable, पर अभी तक वो medal नहीं मिल रहा है. कहाँ हम चूक रहे हैं?
2: बिल्कुल सर, डेफिनेटली वो मेडल हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि काफी हार्डवर्क कर रहे हैं उस मेडल के लिए. और इंडिविजुअल और एज ए टीम अपने आप को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में फोर्थ आए, बट हमें पता था उस मेडल के लिए हमने कितना मेहनत किया है. और आज ये बोल सकते हैं कि जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ आया है, शूट के साथ साथ बाकी जो हमारे कोचिंग स्टाफ है, 6 महीने में अगर टीम ने ये प्रोग्रेस किया है कि हम टॉप 5 में आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है. थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, बट नेक्स्ट वर्ल्ड कप और एलए के लिए आई थिंक हमारी टीम डेफिनेटली मेडल के लिए रेडी होगी.
0: यू नो, यू हैव प्लेड 360 कितने 316 बार इंडिया के लिए खेली है आप. कभी यू आर द मैराथन वुमन ऑफ इंडियन हॉकी, बार बार आप इतने सालों से खेल रही है. कभी कोई जब तक मेडल ना मिले मुझे लगता है आप छोड़ना नहीं चाहेंगी.
2: डेफिनेटली क्योंकि हर एक एथलीट का यही सपना रहता है सर, कि आप मेहनत करते हो तो आपका जो गोल है आप उसके लिए लास्ट तक लड़ें. और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी टीम ने मुझे बहुत बार वो रियलाइज कराया है कि हम मेडल के काफी क्लोज हैं. वो मोटिवेशन रहता है कि अभी और करना है.
0: यू नो नवनीत कौर, यू आर द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर इंडिया इन द लास्ट 12 मंथ्स, बेस्ट प्लेयर ऑफ द हॉकी इंडिया लीग, बेस्ट प्लेयर एट FIH वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. क्या आपको लगता है फिनिशिंग अहेड ऑफ द मेंस टीम, जिस तरह से फिफ्थ आए, जर्मनी को हराया, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि हो सके बाय 2028 ओलंपिक्स हम विमेन्स हॉकी में पहली बार मेडल लेकर आए?
3: जी हाँ जी सर, बिल्कुल. हमारी टीम ने काफी इम्प्रूव किया है पिछले 7-8 महीने में. हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जितने भी टूर्नामेंट खेले हैं, और वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बहुत अच्छा खेलकर आई है. अफकोर्स कि हमने जो सोचा था कि हम मेडल लेके आएंगे हम उससे रह गए, बट जो हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने जितनी भी टीमों के साथ खेले हैं सब हमसे हायर रैंक टीम्स थी, या हम उनके साथ ड्रॉ खेले हैं, लास्ट मैच जर्मनी को भी बीट किया है हमने, तो अफकोर्स कि हमें लगता है कि हमारे अंदर वो बिलीव आ चुका है टीम में कि हाँ हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं. तो अफकोर्स कि अब जो एक सपना है कि ओलंपिक का मेडल लेना हमने, वो हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है.
0: And you can watch that full interview with our hockey players on India Today's digital platform. Okay, let me turn and end the show tonight with a very special story. A mother's determination to secure a better future for her daughters has now gone viral. 47-year-old Ramabai Ranveer from Maharashtra's Bid district ran a marathon barefoot in a sari, competing against much younger runners. She finished first, 1 rupees 3,000, which she now plans to use for her daughter's education. This is a story that gives you hope, that will inspire many people. I want to leave you, therefore, with tonight's inspirational story. Remember, this was the news without the noise. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind, Namaskar. Take a look at the Marathon Woman.
4: This video of Ramabai Ranveer is viral. The 47-year-old ran a marathon in Bid to fund her daughter's education. Ramabai, who ran the race barefooted in a sari, left youngsters behind to come first. She won a cash prize of 3,000 rupees.
5: आणि माझी अशी जिद्द होती की मला ते बक्षीस जिंकायचं होतं. मी ज्यावेळेस धावत होते त्यावेळेस माझ्या मुलींचं भविष्य माझ्या डोळ्यासमोर दिसत होतं. ते मी ते बक्षीस घेतलं, त्या बक्षिसातून माझ्या मुलीला पुस्तकं आणि वह्या पेनी.
6: आणि आई हिम्मतवाली आहे आणि आम्हाला हारू देत नाही. आईला शिक्षणाची आवड आहे म्हणून आम्हाला शिकवते. छंद आहे म्हणजे पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं माझं. मग मी पोलीस बनण्यासाठी माझ्या गावातली 2-3 मुली लागल्या तिथं, मला तिनं पत्ता दिला. मी आधी शेतामध्ये काम करत गेली.
4: Ramabai has enrolled her elder daughter in a coaching academy in Ambajogai. She works as a cook in the same academy.
7: त्यांना पण मी म्हटलं की तुम्ही इथं जर स्वयंपाक वगैरे करू शकत असाल तर मग त्या स्वयंपाकाच्या मिळणाऱ्या वेतनातून आणि याच्यातून तुमची उपजीविका भागवायला पण मदत होईल.
4: One of Ramabai's daughters is preparing for banking exams. The other daughter, Pooja, is training for police recruitment. Her tireless efforts to educate her daughter has won her praise on the social media. Vidrohi Das, Lahudas Hatagle, Bureau Report, India Today.

0: Station campus, which is approximately 35 acres. Then there's also another location, Pattinapakkam, which is an area exceeding 20 acres, and Nandambakkam, a site opposite the FinTech City, which is approximately over 20 acres. So these are some of the places where the new secretariat construction is possible. Now, shifting focus, some more breaking news coming in. A dreaded gangster accused of plotting singer Ankit Balyan's murder from behind bars has expressed fear of being killed in an encounter by Uttar Pradesh police. Rakesh alias Pappu, a gangster linked to the Gogi gang and currently lodged in Karnal jail in Haryana, has written to Haryana and Uttar Pradesh authorities through his lawyer. In his letter, Pappu has requested that if Uttar Pradesh police takes him into custody, his hands and legs be cuffed during the transit. He has also sought video from the moment he is taken out of the jail until he reaches his destination, along with round-the-clock security. The request comes after two shooters allegedly involved in Ankit Balyan's murder were killed in an encounter with Uttar Pradesh police. Shamli police had named Pappu after the shooters were killed, alleging that he had helped plot the singer's murder while being in jail. The Balyan family had reacted in the earlier encounter, saying that justice is half done. Interestingly, Uttar Pradesh police has not yet sought Pappu's custody. A Shamli police team is expected to approach Karnal jail for his custody. Pappu's preemptive plea asking to be handcuffed and videotaped now highlights his fear of what could happen if he falls into the custody of the Uttar Pradesh police. So the role of another gangster is now emerging. The Shamli police have alleged that Pappu, who's inside the jail, he was the one who had plotted Ankit Balyan, the Haryanvi singer's murder in Shamli. And this gangster Pappu is linked to the Gogi gang and he's currently lodged in the Karnal jail in Haryana. And he has now written to Haryana and Uttar Pradesh authorities through his lawyer. And in his letter, Pappu has requested that if Uttar Pradesh police takes him into custody, his hands and legs should be cuffed during the transit. In fact, he has also sought videography from the moment he is taken out of the jail until he reaches his destination along with round-the-clock security. Now, this request comes just after two shooters, allegedly, who were involved in Ankit Balyan's murder. They were killed in an encounter with the Uttar Pradesh police. My colleague Arvind Doja is now joining us with more details on this. Arvind, dar saaf dikh raha hai apradhiyon mein. Ek aur naam saamne aaya hai Shamli police ki taraf se, jiska naam Pappu gangster hai. Usne ye dar jataya hai ki kahin uska bhi encounter na ho jaye aur isliye videography ki demand ki gayi hai.
1: बिल्कुल, देखिए ये करनाल हरियाणा की करनाल जेल में बंद है. इसका गैंगस्टर का नाम है राकेश उर्फ पंपू. ये गोगी गैंग से जुड़ा हुआ है और कल इसने अपने वकील के जरिए शामली पुलिस के एसपी और डीजीपी हरियाणा और जो करनाल के जेल ऑफिसर हैं उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा गया है कि जब उसे जेल से यूपी पुलिस लेकर जाए तो उसके हाथ और जो पैर है उसमें बेड़ियां बांधी जाए और साथ ही साथ तो पूरे रूट की वीडियोग्राफी कराई जाए. हाथ और पैर में बेड़ियां बांधने की बात अगर जेल में बंद एक डेयरेड गैंगस्टर कर रहा है तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनकाउंटर का डर उसे सता रहा है और यूपी पुलिस का डर उसे सता रहा है. देखिए, बीते दिनों भी इस तरह के कई मामले आए हैं जब कस्टडी के दौरान जो बदमाश है वो भागने की कोशिश किया और यूपी पुलिस ने उसे इनकाउंटर में मार गिराया. तो उसके बाद से राकेश काफी ऐसा लगता है डरा हुआ है. और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो अंकित बालियान सिंगर जिसका मर्डर हुआ है उस मामले में जेल से पूरी प्लानिंग रची गई थी और उसमें राकेश जो गैंगस्टर करनाल की जेल में बंद है उसका नाम भी सामने आया है. लेकिन पुलिस प्रोडक्शन वारंट लगाती उसके पहले ही राकेश ने ये सारे रूल्स फॉलो करने के लिए तमाम जो ऑफिसर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऑफिसर को लेटर लिखा और लिखा है कि जब उसे जेल से पुलिस लेकर जाए तो हाथ और पैर में बेड़ियां बांधकर लेकर जाए.
0: जी अरविंद, और एक और जो एंगल सामने आ रहा है वो है कि अंकित बालियान का जो गाना था भरी कोर्ट में गोली मारूंगा, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है. अगर वो गोगी गैंग से लिंक था और ये पूरा मर्डर क्या उस गाने से लिंक्ड हुआ है?
1: बिल्कुल, देखिए उसी गाने की वजह से ही ये मर्डर हुआ है. जो जितेंद्र गोगी है उसकी रोहिणी कोर्ट में 2021 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो भी कोर्ट

0: के अंदर उसके बाद जो अंकित बालियान है उसने ये गाना बनाया था। गोगी गैंग के लोगों को लगता था कि ये गाना जो गोगी जितेंद्र मान गोगी रोहिणी में कोर्ट में जो मर्डर हुआ था उसी को लेकर ये गाना बनाया गया था, और इस वजह से लगातार अंकित बालियान को धमकी भी मिल रही थी, जिसके बाद वो हरियाणा से छोड़कर शामली में रह रहा था। लेकिन यहाँ भी शूटर आए रेकी की और पूरी प्लानिंग के साथ ऑटोमेटिक वेपन से उसका मर्डर कर दिया। और जांच में ये भी सामने आया कि जो जेल में बैठ बंद गैंगस्टर हैं दिल्ली और हरियाणा की जो गोगी गैंग से जुड़े हैं, उन्होंने जेल में बैठकर इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग रखी। उसके बाद शूटर शामली भेजे गए और हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। जेल में बंद जो गैंगस्टर है उन्हीं में से एक गैंगस्टर है राकेश, जिसने अब एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे हाथ और पैर में बेड़िया बांध के यूपी पुलिस यूपी लेकर जाए।
1: जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन। अनदर नेम हैज इमर्ज्ड ऑफ पप्पू गैंगस्टर हु अलेजेडली प्लॉटेड दिस मर्डर बीइंग इनसाइड द जेल, एंड नाउ ही हैज एक्सप्रेस फियर दैट ही माइट आल्सो बी किल्ड इन एन एनकाउंटर बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस। मीनवाइल इंडिया टुडे स्पोक विद अंकित बालियान्स वाइफ जस्ट टू डेज अगो, हु एक्सुडेड कॉन्फिडेंस इन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आफ्टर द एनकाउंटर किलिंग ऑफ द टू शूटर्स, बट शी सेड दैट द जस्टिस इज only half done. Listen in. सीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जो न्याय है उसका उसकी मांग कर रही थी इनकाउंटर की मांग कर रहे थे, अब चार में से जो दो शूटर्स हैं उनको मार गिराया गया है इनकाउंटर में, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है?
2: मैम बिल्कुल लगता है कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है, और जैसे कि पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि वो लोग अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं केस पे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी है कि न्याय की शुरुआत हो चुकी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस केस को बहुत ही गंभीरता से लिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठ गया था जैसे सिटी के बीच में अंकित जी पे 20 फायर हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है और उनकी जो एक प्रॉपर कार्यशैली है उसी में जवाब देते हुए दिखा दिया है कि क्यों वो सबसे अलग सीएम है, तो अपने प्रदेश के सीएम पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस चीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका उनका कहना ही यही है कि माफियों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद उनसे बंधी हुई। इस तरह दो लोगों का एनकाउंटर हुआ है, पूरे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए।
1: And now shifting focus, fresh storm brewing in Bengal. Mamata Banerjee's niece Brishti Mukherjee has been found dead at her residence in Birbhum. Brishti was reportedly found hanging and the exact circumstances surrounding her death are not yet clear. Her body has been sent for post-mortem as police begin their investigation. But Brishti Mukherjee was also a name that had figured prominently in the Bengal teachers recruitment scam. She was accused of being an illegal beneficiary of the recruitment process and had lost her teaching job following a Calcutta High Court order. And the BJP has already stepped in, demanding answers from Mamata Banerjee, alleging that Brishti was an illegal beneficiary of the teachers hiring scam, and says Mamata must answer questions surrounding the case.
3: कोई भी मृत्यु अत्यंत दुखद है। बृष्टि मुखर्जी, उनका नाम 2023-24 में हेडलाइंस में सुर्खियों में आया था, क्योंकि वो ग्रुप सी में उनको जो अवैध तरीके से उनको नौकरी मिला था इसलिए, और कोर्ट के जो वर्डिक से उनका नौकरी चला भी गया था, तो कहीं ना कहीं जाके ममता बैनर्जी को इस बात में इसके जवाबदेही करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो सुना गया है कि उनके घरेलू कुछ समस्या हो रहा था, तो उसकी वजह से या किसी भी वजह से उनकी मृत्यु है, आत्महनन उन्होंने किया है। मृत्यु दुखद है, लेकिन ममता बैनर्जी जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा।
4: मैंने देखा न्यूज में, दुखद घटना, अब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये खबर भी मैं न्यूज चैनल में देखा।
1: And some more news coming in. Heavy rain claimed at least 7 lives and triggered a series of landslides, house collapses and flash flood-like situations across Uttarakhand. On Tuesday, while falling boulders blocked the arterial Dehradun-Masuri highway and disrupted traffic, At least three people were killed after the walls of a house collapsed around 3 a.m. in Oduda village in Almora's Havalbagh block. The deceased were identified as Prema Devi, Kalkana Arya and Manish Kumar. One person, Gulab Ram, who was sleeping in a room outside the main house, managed to escape safely. The administration and rescue teams rushed to the spot after receiving the information. An SDRF team led by Sub-Inspector Pankaj Dangwal also reached the site from the Saryapani post and joined the rescue operation. So the situation remains grim in Uttarakhand as heavy rain claimed at least 7 lives and triggered a series of landslides, house collapses and also flash flood-like situation across Uttarakhand. In fact, my colleague Ankit Sharma is now joining us with the latest. Ankit, give us the latest update. How is the situation currently in Uttarakhand?
5: Anjali, continuous rainfall yesterday triggered flooding, landslide and road blockages across Uttarakhand, prompting rescue and relief operations in several districts. As we go to Udham Singh Nagar, the Gola River was in spate and as more as 27,000 cusecs of water was released from Haldwani, and that led to overflowing of Khakra River as well, which has affected many families in the villages. And in Tiri landslide block NS-34 in Almora, in two different incidents, 5 people were reportedly dead when 2 women and an infant in Uriara village were buried under the debris. And in a different incident, 2 Nepali laborers were also buried under the debris after the muck came heavily down downstream in Dharki Toon. And in Bageshwar as well, 16 roads are blocked. The Kosi and Shipra rivers are flowing strongly in Nainital as well, causing the residents who are living nearby river banks to leave that area and move to safer places. In Dehradun as well, day before yesterday at midnight, the car was also swept away by floods in Kandoli area of Dehradun, which led two young deaths in the area. SDRF led to the rescue operation. One was saved and was taken to the hospital as well. So there was a series of incidents in Uttarakhand last night as well. And there were several rivers who are raging. We also received reports of landslides in several areas. As many as 170 roads are blocked so far, which also includes NH in Pithoragarh, Nainital and Bageshwar, which have been blocked. The PWD department is working with Pokhran machines to restore the highways as soon as possible. And even today, there's a yellow and orange alert in Nainital, Tiri and Dehradun, causing schools to remain closed in 5 districts of the state. Anjali.
1: All right, Ankit, thank you for those details. So flash flood-like situation being reported from Uttarakhand, where there has been heavy rainfall. In fact, several house collapses and landslides are also being reported. And the schools have been closed. There's an orange alert also that has been issued for today. And 7 people have unfortunately been killed due to the heavy rainfall and the landslides and the flash flood-like situation that has been caused due to it in Uttarakhand.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: A very good morning to all our viewers. You're watching The Burning Question on India Today with me, Anjali Pandey. And at the top of this hour, we're getting some breaking news. This is regarding the Delhi rape case of a 16-year-old. There has been a big revelation in the Delhi bus gang rape horror. Bus CCTV malfunctioned and the accused took advantage of this fact. Forensic proof of accused and survivor in bus has also emerged. Delhi police have seized the clothes of the driver and the conductor. So there's crucial evidence in the bus gang rape case now. The CCTV camera installed in the bus was not functional. This means that the CCTV was not working at the time of the incident and the accused took advantage of this fact. The fingerprints, in fact, confirmed the presence of the accused in the bus. The police have obtained vital forensic evidence in the Delhi-Kashmiri Gate bus gang rape case. According to the police, the fingerprints of the victim and both the accused, the driver and the conductor, have been found on the bus. The police had also seized the clothes of the bus driver Kuldeep and the conductor Sandeep. And forensic samples have also been collected from the seats and the steering wheel. The DNA report is awaited. The girl had taken a lift in the bus from Pari Chowk in Greater Noida on August 4. And the police will file the charge sheet in this case very soon. But that's the latest update that's coming in. We're learning that the bus CCTV was not working and the accused had taken advantage of this fact that the CCTV is not working. So there's no CCTV evidence of the rape. But there has been forensic evidence. The fingerprints have matched. The fingerprints of the victim and the conductor and the bus driver have, in fact, matched and their presence has been confirmed inside the bus. My colleague Arvind Doja is now joining us with more details on this. Arvind, CCTV camera jo tha bus ke andar wo kaam nahi kar raha tha aur hame ye jankari mil rahi hai ki us cheez ka fayda utha ke bus aur conductor ne ye gang rape kiya aur is puri investigation mein aur kya pehlu samne aa raha hai?
1: देखिए, बड़ा लैप्स तो यही है अंजलि की, जो बस में मैंडेटरी होता है कि सीसीटीवी लगा हो और वो फंक्शनल हो, लेकिन इसमें बस में जो सीसीटीवी लगा था वो फंक्शनल नहीं था और अक्यूज को शायद इस बारे में जानकारी थी और इसका फायदा उठाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, नंबर एक. नंबर दो, जो पूरा बस था उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस ने कराया था. उस बस से जो अक्यूज्ड हैं दोनों, बस का ड्राइवर और कंडक्टर, उनके भी फिंगरप्रिंट मिले हैं और साथ ही साथ जो विक्टिम है उनके भी फिंगर प्रिंट मिले हैं, जिससे ये साफ होता है कि बस में सभी की मौजूदगी थी. उसके अलावा जो अक्यूज्ड है उनके कपड़े और विक्टिम के कपड़े, वो तमाम कपड़े दिल्ली पुलिस ने सीज किए हैं, जिनकी डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट फाइल करेंगे, लेकिन बस में सीसीटीवी नहीं था, उसके बाद भी बस ये चल रही थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है. और इंडिया टुडे ने इस रियलिटी चेक भी किया है, जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली और नोएडा के बीच इंटरस्टेट इस तरह की लग्जरी स्लीपर बस चल रही है. तमाम नियम और कानून को ताक पर रखकर रूल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और बसें धड़ल्ले से चल रही हैं. अंजलि,
0: अब चूंकि जो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच कर चुके हैं, जो सीसीटीवी वाला एंगल है वो भी सामने आ गया है कि वो चल नहीं रहा था, तो अब क्या एक्शन लिया जा सकता है जो बस कंडक्टर है और जो बस ड्राइवर है उनके खिलाफ?
1: देखिए, ये जो तमाम चीजें मिली हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये सब कुछ चार्जशीट में दिल्ली पुलिस फाइल करेगी. जो विक्टिम का स्टेटमेंट है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की थी और अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था. जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो तमाम फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के बाद एक फुल प्रूफ चार्जशीट अक्यूज्ड के खिलाफ दिल्ली पुलिस बनाने की तैयारी में है और साथ ही साथ जो बस का वॉयलेशन है उसको लेकर अलग से जो दिल्ली पुलिस है उसने फाइन चार्ज किया हुआ है. तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अक्यूज्ड फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है और दिल्ली पुलिस अब चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है.
0: जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो द चार्ज शीट विल बी फाइल्ड बाय द दिल्ली कॉप्स. मीनवाइल द लेटेस्ट डिटेल्स व्हिच आर इमर्जिंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इज दैट द सीसीटीवी कैमरा इनसाइड द बस वाज नॉट फंक्शनल एंड द अक्यूज्ड इन दिस केस द बस कंडक्टर एंड द बस ड्राइवर टुक एडवांटेज ऑफ दैट फैक्ट एंड कमिटेड दिस क्राइम. दे रेप्ड द 16 ईयर ओल्ड एंड इन फैक्ट वी आर ऑल्सो लर्निंग इज दैट द फिंगरप्रिंट्स हैव ऑल्सो मैच. सो द विक्टिम्स फिंगरप्रिंट एंड द अक्यूज्ड, both the accused fingerprints have also matched.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: Delhi is staring at a breathing crisis. We've talked about the problem. We've tried to look away, but not anymore. Because what if we told you, you can be part of the solution? India Today brings pollution ka solution.

0: Thank you for staying with India Today. You're watching Lunch Break. I'm Suesha Sawant. And well, the Nepal reels from the catastrophic flash floods with death toll crossing 1,000 and efforts underway to trace nearly 4,000 remaining people who are still reportedly missing. India continues to stand with Nepal during these tough times and has stepped up its relief efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that the fifth Indian aircraft has departed for Nepal. He added that the aircraft was carrying an 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, actor Sonu Sood has also reached Nepal. While speaking to India Today, the actor said that Nepal has been deeply affected by the floods and needs help. He urged everyone to extend every possible assistance to Nepal and help restore the affected areas. Rescue operations are still underway across the affected areas as teams continue to sift through the debris in search of survivors. India also remains actively involved in the rescue efforts at the Chilim Hydropower plant. The Indian tunnel rescue team has managed to move deeper inside the hydropower tunnels despite restricted access and marshy floor. The MEA on Tuesday said that 163 Indians have been rescued so far, while 151 Indians left China. An Indian forensic team has also expanded its operations in Nepal.
1: अपनों की तलाश में लोग जब एयरबेस के पास पहुंचे हैं, बहुतों के शव नहीं बरामद हुए, किसी के शव का कुछ हिस्सा मिला है। ये भाई के पास अपने परिवार के एक सदस्य का तस्वीर है जिसमें हाथ में अंगूठी है। चूंकि शव पूरा नहीं मिला है, इसलिए वो उस शव के हिस्सों को देख करके पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाथ में वो अंगूठी दिख जाएगी। ये चुनौतियाँ हैं अपनों को पहचानने की, अब जानने की कि क्या कोई सुराग मिल सकता है। सोचिए, अगर चेहरा मोहरा हो तो देख के पहचान लें कि ये उनके परिवार का सदस्य है। अब इस हाथ की अंगूठी को जो शव बरामद हुए उन तस्वीरों के साथ ये देखने के लिए, पता करने के लिए कि जिसका इंतज़ार है कहीं वो उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। समझिए कैसी मानवीय त्रासदी, जिस तरह की वेदना मन पर बीतती होगी। उम्मीद में लेकर के आते होंगे कि जिंदा बचाए लोगों में नाम मिलेगा, नाम जिंदा बचाए लोगों में नहीं मिलता, लेकिन ये भी नहीं पता वो कहाँ हैं। और अब उनके हाथ में दी जाती हैं वो तस्वीरें जिसमें मरने वाले लोगों के बारे में जानकारी, उनसे जुड़े कुछ तस्वीरें हैं, हिस्से हैं शरीर के। अब उनसे मिलान करके उन्हें ये देखना है कहीं उनके अपने तो नहीं थे। आमतौर पर जब धारा बढ़ती थी हर साल, लोगों को लगता था कि त्रिशूली भटकोशी की धारा है, मॉनसून है, तिब्बत में पहाड़ों से पानी आ रहा है तो जलस्तर सामान्य रूप से बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये साल हर साल की तरह नहीं है। इस साल की जो तबाही है, इस साल जो जलस्तर है, वो सिर्फ सामान्य नहीं है बल्कि ये असामान्य घटना होगी। और इसीलिए बहुत सारे लोग समय रहते जिन्हें अंदाज़ा लगा वो जंगलों में पहाड़ों में ऊँचे भाग गए, उनकी जान बच गई। जो नहीं भाग पाए वो इस धारा का शिकार हो गए। इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा 1,000 पार कर चुका है।
2: Incredible courage display in Nepal as I see people are being evacuated from the areas which were totally disconnected. Look at this. Right over the scary flow of Trishuli, the ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli, in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago, when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away. And now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the rope bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how these operations being carried out.
1: नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं, और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गाँव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं मदद के लिए। उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे थे। पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किलें हैं इस समय, जितनी मदद के लिए हाथ आए उतने कम हैं।
3: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा, किस तरह उन लोगों को, जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए और प्लीज मदद के लिए इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है ताकि हम नेपाल को वापस उसके कदमों पे खड़ा कर पाए।
1: सोनू सूद की ओर से किस तरह की मदद मिलेगी यहाँ के लोगों को?
3: पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र, लायंस फाउंडेशन वाले, खालसा एड की फैमिली, सूद चैरिटी फाउंडेशन के सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कर सकते हैं और कोशिश करेंगे मिलकर वापस एक ऐसा मैसेज दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर मदद कर पाए।
0: And that's all that we can pack for you in this edition of the news. Slipping into a very short commercial break, my colleague Anisha Mathur joins you on the other side with the very latest news. Stay tuned to India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: As Nepal reels from the catastrophic flash floods, the death toll has crossed 1,000 and efforts are underway to trace nearly 4,000 people who still remain missing. India continues to stand with Nepal during these difficult times and has stepped up its relief efforts. External Affairs Minister S. Jaishankar said that the fifth Indian aircraft had departed for Nepal. He added that the aircraft was carrying an 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines as well. Meanwhile, actor Sonu Sood has also reached Nepal. While speaking to India Today, the actor said that Nepal has been deeply affected by the floods and needs help. He urged everyone to extend every possible assistance to Nepal and help restore the affected areas. Rescue operations are still underway as we speak across affected areas as teams continue to sift through the debris in search of survivors. India also remains actively involved in the rescue efforts. At the Chilimi Hydropower plant, the Indian Tunnel Rescue Team has managed to move deeper into the hydropower tunnels despite restricted access and a marshy floor. The MEA on Tuesday said that 163 Indians have been rescued so far, while 151 Indians left China, and also the Indian forensic team has expanded its operations in Nepal now.
1: अपनों की तलाश में लोग जब एयरबेस के पास पहुंचे हैं, बहुतों के शव नहीं बरामद हुए, किसी के शव का कुछ हिस्सा मिला है। ये भाई के पास अपने परिवार के एक सदस्य का तस्वीर है जिसमें हाथ में अंगूठी है। चूंकि शव पूरा नहीं मिला है, इसलिए वो उस शव के हिस्सों को देख करके पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाथ में वो अंगूठी दिख जाएगी। ये चुनौतियाँ हैं अपनों को पहचानने की, अब जानने की कि क्या कोई सुराग मिल सकता है। सोचिए अगर चेहरा मोहरा हो तो देख के पहचान लें कि ये उनके परिवार का सदस्य है। अब इस हाथ की अंगूठी को जो शव बरामद हुए उन तस्वीरों के साथ ये देखने के लिए, पता करने के लिए कि जिसका इंतज़ार है कहीं वो उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। समझिए कैसी मानवीय त्रासदी, जिस तरह की वेदना मन पर बीती होगी। उम्मीद में लेकर के आते होंगे कि जिंदा बचाए लोगों में नाम मिलेगा, नाम जिंदा बचाए लोगों में नहीं मिलता, लेकिन ये भी नहीं पता वो कहाँ हैं। और अब उनके हाथ में दी जाती हैं वो तस्वीरें जिसमें मरने वाले लोगों के बारे में जानकारी है, उनसे जुड़े कुछ तस्वीरें हैं, हिस्से हैं शरीर के। अब उनसे मिलान करके उन्हें ये देखना है कहीं उनके अपने तो नहीं थे। नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं, और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गांव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, मदद के लिए उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे। देखिए पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है और अब उन इलाकों में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किलें हैं इस समय, जितनी मदद के लिए हाथ आए उतने कम हैं।
2: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा, किस तरह उन लोगों को, जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए और प्लीज मदद के लिए, इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है ताकि हम नेपाल को वापस उसके कदमों पे खड़ा कर पाए।
1: सोनू सूद की ओर से किस तरह की मदद मिलेगी यहाँ के लोगों को?
2: पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे बहुत सारे दोस्त मित्र, लायंस फाउंडेशन वाले, खालसा एड की फैमिली, सूद चैरिटी फाउंडेशन के सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे मिलकर वापस एक ऐसा मैसेज दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर मदद कर पाए।
3: Incredible courage display in Nepal. As I see, people are being evacuated from the areas which were totally disconnected. Look at this. Right over the scary flow of Trishuli, the ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli, in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago, when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away, and now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the rope bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how these operations being carried out.
0: Moving on, let's look at how in a fresh escalation, the U.S. launched a new barrage of airstrikes on Iran, triggering Iranian retaliation and marking the most serious escalation in weeks. But amid this escalating conflict, a wedding near Sirik on Iran's southern coast turned into a scene of tragedy. CCTV footage captured the moment a U.S. strike hit a wedding ceremony in Sirik, Iran. At least 5 people have been killed and 50 others wounded, according to the Iranian Red Crescent. Iran's Mehr News Agency reports that a 4-year-old child was among those killed. A child's shoe was found at the site and it has emerged as a grim reminder of the devastation reported from the blast. While the U.S. has not yet responded to the allegation that it were its strikes which were responsible for this, another video released by the Iranian side shows the aftermath of the very attack. The tragedy also brings back haunting memories from Minab, where a school was hit during the February 28 strikes, with reports of more than 100 children being killed. And now an Iranian animation team, Explosive Media, has released a Lego-style animated video depicting what it claims was a U.S. strike hitting the wedding in Sirik, Hormuzgan. Through the videos, Iran has also vowed to take revenge from the U.S. And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
4: You are watching India Today.
5: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।

0: has welcomed the court order, while NCPSP leader Supriya Sule has dismissed the renewed questions, saying she believed the matter was already over.
1: सवाल ये उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी, रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया। अब इस सारे प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी और मुकदमा दर्ज होगा।
2: I have no idea because to the best of my knowledge that case was over. I have no idea. I'll have to check and get back to you on that.
0: Years have passed. The questions have remained. Now the CBI has been asked to find the answers. Because for Disha Salian's family, this is no longer about allegations or politics. It is about knowing what happened to their daughter. With Mustafa Sheikh and Vidya in Mumbai, Bureau Report, India Today.
3: Let me take this to my colleague Mustafa Sheikh, who's been tracking all the developments. Mustafa, certainly coming in as a relief for Disha's family, especially her father, who had indicated foul play from day one. Do take our viewers through details of what the court has said and how the CBI probe has been ordered.
4: Well, it's true that in March 2025, Disha Salian's father, which is Satish Salian, had approached the Bombay High Court with a petition saying that there is a foul play in his daughter's death, which happened in 2020, and which was ruled out as a case of suicide by the Mumbai Police Malwa Metropolitan Investigation. The SIT, since last 1 year, has been probing this case formed by Mumbai Police, but they were also not able to come up with concrete answers. But some facts which were pointed out in the Bombay High Court by Advocate Nilesh Ojha was representing Satish Salian, saying that the injuries don't match the circumstances of the crime. There are a lot of questionable aspects, including the post-mortem report in this entire case. And the High Court in its order has said that the investigation which has happened in the last 6 years raised more questions rather than answer them. And hence, the CBI FIR was ordered. The CBI will record statement of Disha Salian's father, and then they may go on to record statement of people who are blamed or named as an accused in the case. But as of now, the court has said that nobody will be assumed to be accused till the time there is some considerable or reasonable amount of evidence found against them. Back to you.
3: But it is going to be challenging for the CBI to conduct this probe. How 6 years have passed and many of those evidences that may have been completely destroyed. What are you picking up from your sources?
5: की बात है ना, और सीईओ कौन होगा अभी हम नहीं बता सकते। नाम आ रहा है लेकिन अभी फाइनल पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ।
6: बाबू जिस दिनों बाबू जी से चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद चल रहा था, लोगों ने इस्तीफा भी दिया, अब आए हैं आप, इसको क्या व्यवस्था किस तरह करना चाहेंगे?
5: अरे व्यवस्था सब हो रही है, कौन सी उसमें दिक्कत की बात है?
6: किस प्रकार से आप मंदिर को संभालेंगे, आप नए सदस्य बन?
5: अब देखेंगे
6: क्या कुछ जिम्मेदारियां तय की गई जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
5: नहीं गया था? अभी कुछ नहीं जिम्मेदारी तय की गई, बस
6: इतने साल से आप
7: आज क्या क्या नया हुआ इतना बोल रहे हैं जो भी बच्चे का उम्र हूँ
8: शुरू करें। जय श्री राम,
9: जय श्री राम।
8: आज 2 सितंबर 2026 को दो बैठकें हुई। पहली बैठक 2 बजे से प्रारंभ हुई, उसमें हमारे पास में जो रिक्त 3 न्यासियों के पद थे उनके भरने की प्रक्रिया हुई। इस 3 जो रिक्त पद थे उसमें नाम आए। पहले नाम है श्री महेश भागचंद्र का, वो उनके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, नहीं तो आपको जानकारी हम देते हैं थोड़ी सी। महेश भागचंद का स्नातक हैं आयु 68 वर्ष, व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं, नई दिल्ली में निवास। हिंदुत्व के पुरोधा एक पुस्तक है, उसके लेखक भी हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में यजमान की भूमिका में अनुष्ठानों में सहभागिता रही है। श्री राम वनगमन यात्रा से जुड़े 292 पवित्र तीर्थ स्थलों में श्री राम स्तंभ की स्थापना में संलग्न रहे हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनको हमने न्यासी के रूप में स्वीकार किया, उनकी तरफ से सहमति भी आ गई और उसके बाद में अभी जो दूसरी बैठक हुई उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित भी थे। दूसरे जो न्यासी थे उस पद के लिए श्री मदन मोहन पांडे जी का नाम।
10: महेश जी दिल्ली के, इतना बोल दीजिए बस, भागचंद का जी दिल्ली के।
8: हाँ, भागचंद जी का आ गया, महेश भागचंद जी का दिल्ली के निवासी हैं। दूसरे जो नाम है श्री मदन मोहन पांडे जी, अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या छावनी में रहते हैं, अधिवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता का दायित्व उन्होंने 6 वर्ष का किया। ये राम जन्मभूमि मंदिर मामले में 1990 से लेकर 2019 तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी श्री रामलला विराजमान और पूज्य महान श्री रामचंद्र परमहंस दास जी की ओर से भी उसमें पैरवी में लगे थे। हरि सत्संग समिति के उपाध्यक्ष और अयोध्या में कथाकार संयोजना प्रशिक्षण केंद्र के पालक हैं। इनको भी हमने पहले स्वीकार किया, उनकी तरफ से प्रत्यक्ष जो हमारे प्रस्ताव को स्वीकारता आ गई है और इस दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें भी वो उपस्थित रहे। एक तीसरा जो पद है वो भी रिक्त था है, उस रिक्त पद पर के लिए एक डॉक्टर निर्मला यादव, वो शिकोहाबाद की रहने वाली हैं, परास्नातक है, हिंदी व संस्कृत में दोनों में उनका परास्नातक है, पीएचडी किया है और 19 वर्ष महाविद्यालय प्राचार्य का दायित्व निभाया है और अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। पीएचडी थीसिस और एमए के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का उनको अनुभव है तथा 15 वर्ष तक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सदस्य भी रही हैं। ये पहले जो सत्र था उस सत्र के मुख्य बातें हैं। इस सत्र में जो उपस्थिति है वो अपने अध्यक्ष महोदय पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज थे, पूज्य स्वामी गोविंदेव गिरी जी थे, पूज्य महंत श्री दीनेन्द्र दास जी थे महाराज थे। ये जो ऑनलाइन होता आभासी बैठक के माध्यम से श्री के पाराशरण जी जुड़े, पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी भी जुड़े, पूज्य युगपुर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जुड़े, पूज्य माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जुड़े तथा विशेष आमंत्रित में श्री दिनेश जी, दिनेश चंद्र जी, कमल नयन बजाज जी, राजगोपाल मणियार जी और जगदीश आफड़े जी विशेष निमंत्रित थे। अन्य जो एक्स ऑफिशियो रहते हैं, ट्रस्टी होते हैं, उसमें यहाँ के डीएम अयोध्या श्री शशांक त्रिपाठी जी थे और ऑनलाइन में श्री संजय प्रसाद जो उत्तर प्रदेश का शासन की तरफ से थे वो लोग थे। इस बैठक के बाद में हमारी दूसरी बैठक वो 3 बजे से हुई। इस बैठक में ये सभी जो पहले थे पूज्य महान श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वामी गोविंदेव गिरी जी महाराज, दीनेन्द्र दास जी महाराज, शशांक त्रिपाठी जी, के पाराशरण जी, पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, संजय प्रसाद जी आईएएस, दिनेश चंद्र जी

0: कमलनयन बजाज जी, राजगोपाल
1: कमलनयन दास जी,
0: राजगोपाल मणियार जी, अखिलेश जगदीश आफरे जी उपस्थित थे, तथा उस दूसरे सत्र में जो हम तीन लोगों को जिन्हें हमने जो बनाया था, न्यासी किया था, वो भी ऑनलाइन उसमें जुड़ गए। वो थे श्री महेश भागचंद्र का, श्री मदन मोहन पांडे जी, डॉक्टर निर्मला यादव भी, और उसमें जो हमारे नृपेंद्र मिश्र जी वो भी जुड़े थे। ये दूसरी जो सत्र था बैठक का, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर हम लोगों ने एक समिति जो थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो चयन समिति थी, मुख्य कार्यकारी चयन समिति के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और उसके बाद में किसको हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। हमने पहले 6 जुलाई 2026 को एक सर्च कमेटी के लिए तीन लोगों की समिति गठित की। वो तीन लोगों में थे श्री प्रमोद कोहली, जो मुख्य न्यायाधीश सिक्किम न्यायालय के रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। दूसरे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री वी के चतुर्वेदी, PVSM, ABSM वेटरन थे। तीसरे थे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट सेवानिवृत्त डॉक्टर सुरेश हावरे जी। ये तीनों ने मिलकर के इस चयन समिति को पूरी कार्यवाही देखी। इनको मदद के लिए ट्रस्ट की तरफ से एक सचिव दिया गया था, सचिव थे श्री समीर पंडा जी। इनकी पहली बैठक हुई थी 11 जुलाई 2026 को, जिसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठहराया, सिलेक्शन का प्रोसेस निश्चित किया। तत्पश्चात जो अपॉइंटमेंट, जिनकी एप्लीकेशंस आनी थी, उनके उन्होंने सॉर्टिंग करना, वो सब काम करना था। इसमें आपको जान करके अत्यंत प्रसन्नता होगी कि भारतवर्ष से 5,585 एप्लीकेशन प्राप्त हुए इस पद के लिए, और इनको टारगेट था एक महीने के अंदर इस कार्य को पूरा करें। 5,585 एप्लीकेंट को सबकी बात सुनते हुए, सबको देखते हुए यहाँ तक पहुँचाना, उसमें से ट्रस्ट ने कहा था केवल तीन लोगों के नाम भेजिए, उन तीन लोगों के नाम तक चयन करने की प्रक्रिया में उनका बहुत समय लगा, बहुत परिश्रम किया, परिणाम स्वरूप हमें तीन नाम दिए गए। इस में आपको और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो 5,585 एप्लीकेशन थे, उसमें जो समीर पंडा जी की, इनकी खुद की एक IIT ट्रेंड वो है, इंजीनियर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो काम करते हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उन सबके समूहों ने मिलकर के उस बात को सामने कैसे प्रोसेस करना चाहिए, उसको प्रोसेस किया। और प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर 11 और 12 अगस्त को 16 जो अंतिम उसमें थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया। 16 लोग आए, 16 लोगों के साथ व्यक्तिशः सभी लोगों के साथ अलग अलग बैठे, उनसे कुछ उनके बारे में पूछा गया, जानकारी ली गई। जानकारी लेते समय उनके पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, उनके काम के बारे में जानकारी ली गई। तत्पश्चात कल 1 अगस्त 2026 को उस समिति ने प्रत्यक्ष यहाँ आकर के, हम यहाँ पर जितने ट्रस्टी थे अयोध्या में, उनके समक्ष उन्होंने वो पुस्तक यहाँ पर प्रस्तुत की, जिस उस पुस्तक के दिए हुए जो तीन नाम थे, उन तीनों नामों पर आज चर्चा हुई। उन्होंने एक साथ में तीन लोग नाम और दिए थे, इसलिए कि गलती से यदि कोई जो पहले तीन जो नाम दिए गए उनमें से कोई कह देता नहीं आ पाऊँगा तो हमें वेटिंग लिस्ट में भी चाहिए, इसलिए उनके भी नाम दिए हुए हैं। अब वो जो तीन नाम आए थे, उन तीनों नामों के यहाँ पर हमने प्रस्तुति की। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सभी तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका

निभा रहे हैं, निभा चुके हैं, निभा रहे जो अभी उसमें है, सर्विस में है, और उस एक एक का नाम बताता हूँ। उसमें से जो पहले नाम थे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र जी, दूसरे नाम थे मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह विश्वास राव, तीसरे थे श्रुति

0: विश्वास राव, तीसरे थे श्रुति भारद्वाज। इनके बारे में जो जानकारी दी गई उसमें उसके ऊपर चर्चा करके निश्चित हुआ कि इसमें से श्री जितेंद्र मिश्र जी को, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र जी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनके बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी और मैं देना चाहूँगा। ये यहाँ पर देवरिया जिला है, अयोध्या से लगा हुआ भोपतपुरा, वहाँ के रहने वाले हैं, अयोध्या से पास में जगह है और वह एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। इनके पिताजी लेक्चरर थे और इन्होंने जो डिफेंस में, एयरफोर्स में काम कर रहे थे, एयरफोर्स में इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला है उनको, और जो कि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। और आपको जान करके सबसे खुशी होगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उस ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका में इनका वो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर जो कमांड करते उस हिजा को, उसके जो लीडर थे ये थे। और इसकी वजह से इनके बारे में ये थोड़ी जानकारी आपके समक्ष रखी है। तो एक तो ये था, इसके पश्चात एक और जो अभी इसमें चेंज हुआ है वो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। अभी तक 6 जुलाई से मैं अंतरिम महासचिव के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहा था और अब समय आ गया था कि हम किसी जो महासचिव, नियमित महासचिव को इस दायित्व का निर्वहन करने के निवेदन करें। तो हमने इस काम के लिए हमारे श्री गोविंद देवगिरी से प्रार्थना किया, महाराज जी ने उसको स्वीकार कर लिया और आज से, अभी से थोड़ी देर पहले से महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के पद के ऊपर महाराज जी उस पर कार्यरत हैं। अब आगे के क्या हुआ
1: तो बोल दीजिए।
0: हाँ, इसके पश्चात महाराज जी ने, अब चूंकि महाराज जी के पास में कोषाध्यक्ष का भी दायित्व था, तो महाराज जी ने ये कहा कि कोषाध्यक्ष जो है वो महेश भागचंद का, जिसके बारे में बताया है, वो इस दायित्व का निर्वहन करेंगे और इस को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये बात दोनों आपके समक्ष मुझे जानकारी देनी थी।
2: And that's the confirmation coming in from the trust. Meanwhile, we shift our focus to what is happening in Nepal. Yes, a week after those devastating floods ravaged Nepal, the search for the missing continues, with more than 1,100 people who are dead already, thousands who are still unaccounted for. In Nuwakot, families are scouring remote mountain areas for loved ones as rescue teams battle treacherous terrain to reach survivors. India has intensified its relief effort with specialized rescue teams, equipment, medicines and aircraft deployed. We're getting these problems.
3: It has been a week since the devastating floods hit Nepal and the race against time. To rescue thousands missing, with each passing minute, hope is fading. Over 1,100 people have died in the tragedy, and rescue operations are underway to find nearly 4,000 people who remain missing. In Nuwakot, people have reached the remote mountainous areas in search of family members who remain missing. The rescue base is covered with photographs of people whose whereabouts are still unknown. In this tragedy, India has stood rock solid with

0: Nepal and provided every possible help to its neighbor. At the Chilime hydropower plant, the Indian tunnel rescue team has managed to move deeper into tunnels despite all challenges and a marshy floor. More than 160 Indians have been rescued. A 13-member team from the Crisis Response International in the US has reached Nepal to help with rescue operations at hydropower tunnel sites.
1: Today we are hoping to get on a helicopter and go into a hydro tunnel, and I'll be leading a team of locals. The army and the police are doing an incredible job. The Nepali people are incredibly resilient, and they're doing an amazing job at rescues, and we get to be a part of serving them today. Yeah, the hardest thing is the people in trauma. There are families here that lost their lives, and that is extremely hard.
0: India has sent a fifth relief aircraft to Nepal. The aircraft carried 11-member rescue team with specialized equipment, along with 5.5 tons of essential medicines. People rescued by Indian teams thanked India for its help.
2: जिस दिन बाढ़ आई हम वृद्ध आश्रम से है हम 40 लोग हैं वहाँ पर हमारा वृद्ध आश्रम में हमारा वास था और कुछ लोग बीमार भी थे कुछ लोग खाना खाने के लिए सब नीचे उतर गए थे ये बाढ़ गया चलो चलो चलो निकल जाओ ना कर जाओ हमको तो यकीन ही नहीं हुआ कैसे आएगा यहाँ पर कैसे आएगा बाढ़ कैसे आएगा कैसे पहुँच जाएगा यहाँ तो कुछ नहीं होगा हमको ये लगा.
0: Meanwhile, actor Sonu Sood has also reached Nepal. He interacted with Nepalese people and called on everyone to come together to help restore Nepal.
3: सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किलें हैं इस समय जितनी मदद के लिए हाथ आए उतने कम हैं।
4: बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जब आप पूरा मंजर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस लेवल का इम्पैक्ट आया होगा किस तरह उन लोगों को जब घर नहीं बचे तो आप सोचिए कि लोगों के क्या हाल हुए होंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए दुनिया भर से जो भी लोग जहां पर भी हैं आगे आइए और प्लीज मदद के लिए इन लोगों के लिए खड़ा होना बड़ा जरूरी है ताकि हम नेपाल को वापस उसके किट कदमों पे खड़ा कर पाए.
0: Many have come forward to help Nepal financially.
5: Earlier as well, we saw the earthquake, we saw floods also earlier, but of this magnitude, you know, the videos that are surfacing, the numbers that are coming in terms of the death toll and also the people missing, or we've pledged 15 crore from our side in terms of relief camps, relief materials, building transitional homes, schools. So, you know, our foundation is quite active. And this is a small gesture from our side.
0: The road access to the core area of the mudslide hit Gairong Port in southwest China's Xizang Autonomous Region has been restored after days of round-the-clock repair work. The Nepal government has urged the world for help, and many nations, including India, are helping. But Nepal needs more aid, assistance and prayers. With Ashutosh Mishra, Nepal, Bureau Report, India Today.
6: And well, Nepal's flood disaster that has left behind a landscape of mud, rubble and unimaginable loss. Once bustling towns at the foothills of Rasuwa now bears the scars of the devastating floods with homes swept away, bridges destroyed and families still searching for loved ones. Some are even performing the last rites with recovered mortal remains, fearing their missing family members may never return. Ashutosh Mishra getting us this ground report from the center of the disaster zone.
3: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है. लेकिन अब ये देखिए ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए. लेकिन मलबे की ऊंचाई जो पूरा इलाका बताता है कि तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है. भटपोशी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई है क्यों उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस त्रासदी में कितने लोगों ने जान गंवाई है. नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं. अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं और इस समय रसुआ के पास जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गाँव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं मदद के लिए, उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे। देखिए पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं।
7: इनक्रेडिबल करेज डिस्प्ले इन नेपाल एज आई सी पीपल आर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम द एरिया व्हिच वर टोटली डिस्कनेक्टेड। लुक एट दिस right over the scary flow of Trishuli. The ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away. And now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the rope bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how these operations being carried out.
3: आमतौर पर जब धारा बढ़ती थी हर साल लोगों को लगता था कि त्रिशूली भटकोशी की धारा है, मॉनसून है, तिब्बत में पहाड़ों से पानी आ रहा है तो जलस्तर सामान्य रूप से बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये साल हर साल की तरह नहीं है। इस साल की जो तबाही है, इस साल जो जलस्तर है वो सिर्फ सामान्य नहीं है बल्कि ये असामान्य घटना होगी। और इसीलिए बहुत सारे लोग समय रहते जिन्हें अंदाज़ा लगा वो जंगलों में पहाड़ों में ऊँचे भाग गए, उनकी जान बच गई। जो नहीं भाग पाए वो इस धारा का शिकार हो गए। इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। अपनों की तलाश में लोग जब एयरबेस के पास पहुंचे हैं, बहुतों के शव नहीं बरामद हुए, किसी के शव का कुछ हिस्सा मिला है। ये भाई के पास अपने परिवार के एक सदस्य का तस्वीर है जिसमें हाथ में अंगूठी है। चूंकि शव पूरा नहीं मिला है इसलिए वो उस शव के हिस्सों को देख करके पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाथ में वो अंगूठी दिख जाएगी। ये चुनौतियां हैं अपनों को पहचानने की, अब जानने की कि क्या कोई सुराग मिल सकता है। सोचिए अगर चेहरा मोहरा हो तो देख के पहचान लें कि ये उनके परिवार का सदस्य है। अब इस हाथ की अंगूठी को जो शव बरामद हुए उन तस्वीरों के साथ ये देखने के लिए, पता करने के लिए कि जिसका इंतज़ार है कहीं वो उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। समझिए कैसी मानवीय त्रासदी, जिस तरह की वेदना मन पर बीती होगी। उम्मीद में लेकर के आते होंगे कि जिंदा बचाए लोगों में नाम मिलेगा, नाम जिंदा बचाए लोगों में नहीं मिलता, लेकिन ये भी नहीं पता वो कहाँ हैं। और अब उनके हाथ में दी जाती हैं वो तस्वीरें जिसमें मरने वाले लोगों के बारे में जानकारी है, उनसे जुड़े कुछ तस्वीरें हैं, हिस्से हैं शरीर के। अब उनसे मिलान करके उन्हें ये देखना है कहीं उनके अपने तो नहीं थे।

मेरा नाम प्रतिराज कुमार है और मेरा भाई सुमित पवार, हम दोनों फाउंडर्स है इकोसिस्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। हमने ये सोच के साथ ये डिवाइस बनाया है कि कोई डिवाइस सिर्फ लेबोरेटरी स्केल के ऊपर या फिर सिर्फ एक रूम के स्केल के ऊपर या क्लोज एनवायरनमेंट में ना रह के वो ऑन ग्राउंड दिखे, ऑन ग्राउंड वो पोल्यूशन को कम करे, एयर पोल्यूशन को, और वो अच्छे रिजल्ट्स दे। मतलब पोल्यूशन हॉटस्पॉट जो है, एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट, वहाँ पर वो लगे और रोड साइड डिवाइडर के ऊपर लगे, रोड के ऊपर लगे। तो इस तरह से हमने ये डिवाइस बनाया है पवन 3 करके। ये जो इनोवेशन है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र में ऑलरेडी लग चुका है, और जो कोल्हापुर में लगा था वो उसे ये पता चला है कि रिजल्ट जो है वो 29% से ऊपर आए हैं। जो AQI में रिडक्शन कह सकते हो या फिर PM 2.5, PM 10 में रिडक्शन कह सकते हो, वो 29% से ज़्यादा आए हैं। पर वो पवन 1 डिवाइस है, ये अभी पवन 3 सीरीज चल रहा है, तो हमें लगता है कि इसके रिजल्ट जो है वो मे बी 40% पार कर जाए AQI रिडक्शन के मामले में और PM 2.5 के मामले में। ये जो पवन 3 नामक डिवाइस है ये हाई सक्शन डिवाइस है, इसमें एयर आगे की तरफ से सक होती है। इसके अंदर मल्टीपल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन है। इसमें हेपा फिल्टर्स लगे हैं, जब अंदर हवा इसके जाती है तो हेपा फिल्टर से पास होके ये हवा मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन में प्यूरीफाई होके ये लास्ट में कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें से पास होके पीछे से निकलती है मशीन के, जिससे AQI में और PM 2.5, PM 10 में रिडक्शन आता है। इसका मेंटेनेंस जो है वो हम बाई वीकली करते हैं, 14 दिन में कोल्हापुर में करते थे, तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन मतलब ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें इसका मेंटेनेंस हमारे हिसाब से हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा। ये जो पवन सीरीज चल रही है इसका कॉस्ट जो है वो 5.5 लाख से चालू होता है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बहुत रहता है। पर क्या है कि कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये डिवाइस कौन सा है, उसमें फिल्टर्स कौन कौन से लगेंगे, एक जगह के ऊपर कितने डिवाइसेस लगेंगे, एयर का फ्लो कितना है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इस तरह से हम उसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करते हैं कि कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा, कौन सा फिल्टर अच्छा रहेगा, इस तरह से उसका कॉस्ट जो है वो चालू होता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को मतलब बहुत अच्छा चांस दे रही है, तो मेरे हिसाब से जो बाकी के कंट्रीज़ के सॉल्यूशंस हैं वो शायद उनके कंट्री में अच्छे होंगे। ये इंडिया का जो सिस्टम है इसके तहत इसके लिए मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया ऐसा हमारा सॉल्यूशन है। अभी आप ये पवन 3 डिवाइस देख सकते हो, ये दिल्ली में कीर्तिनगर में लगा है, ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है कीर्तिनगर में, फिर भी ये चल रहा है, ऐसे ये 3 महीनों से चल रहा है। तो हमने इस डिवाइस को इसी तरीके से बनाया कि जो इंडियन क्लाइमेट को सूट करे, और जो रफ एंड टफ हो, और जो एंटी थीफ हो, हमने इसको फिट किया है ताकि ये चोरी ना हो सके। दिल्ली के बारे में मेरा यही कहना है कि दिल्ली का पोल्यूशन आपको जल्दी कम होते हुए दिखाई देगा, अगर ग्राउंड इनोवेशंस को वगैरह मतलब चांस अच्छा दिया जाए तो। इंडिया टुडे नेटवर्क को और दिल्ली गवर्नमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि ये कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया, और हम इस कैंपेन को सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं देखते या फिर सिर्फ एक मतलब क्लोज आइडिया नहीं देखते, हम इस कंपटीशन को ऐसा देखते हैं कि हम इस कंपटीशन के जरिए, इस कैंपेन के जरिए जो इंडिया टुडे लॉन्च किया है पोल्यूशन का सॉल्यूशन, इसके जरिए हम भारत के कोने कोने में पहुँचे, और इनोवेशन जो है जो हमने किया है वो भारत में पता लगे कि एयर पोल्यूशन कम हो सकता है, ऑन फील्ड ऑन रोड पोल्यूशन के हॉटस्पॉट को टारगेट किया जाए तो कम हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं।

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Well, we've got big news coming in a few seconds. We are going to play out an exclusive phone or the first conversation between the new and the first ever CEO of the Ram Mandir Kshetra Trust to India Today. India Today has spoken to the new Ram Mandir CEO, Air Marshal Jitendra Mishra. He has, of course, outlined his vision about what his plans are going to be. Remember, he's an Operation Sindoor veteran, an Operation Sindoor hero, who you can see on your screens, walking step by step with the Prime Minister. And India Today has spoken to the new Ram Mandir CEO. It's an exclusive conversation with India Today's colleague, India Today's Samarth, who has spoken to it. And in a few seconds from now, we are going to play out that exclusive phone conversation in which he has effectively outlined his plans and how his first reaction had been granted this great honor and this great privilege. The man who for 39 years guarded India's borders, guarded the safety of the country, is now going to be given the responsibility of guarding the Aastha and the faith of Lord Ram and Lord Ram Lalla, to be precise, with him being made the first CEO of the Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust. He has been named that. Jitendra Mishra, of course, served as IF, retiring as Air Marshal just earlier this year. Let's listen in to that phone conversation.
1: एक बड़ा सानिध्य रामचंद्र का है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: इसको मैं अपना भाग्य मानता हूँ और अपने आप को मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा में मैंने लगाए, 17 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक भारतीय वायुसेना में, और आज मुझे श्री प्रभु श्री राम की कृपा से श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा का अवसर भी प्रदान.
1: आप सब एक आप सवाल करूंगा. ऑडियो आ रहा है? रेडी? राम मंदिर को नए सीईओ मिल गए हैं और हमारे साथ इस वक्त वो फोन लाइन पर मौजूद हैं. हम उनसे बातचीत करेंगे. सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. पहले तो कैसे आप इस नए रोल को देख रहे हैं, दर्शकों को बताएं.
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और सबसे पहले तो मैं चयन समिति, श्री राम तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट और भगवान श्री राम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा चयन इस पद के लिए किया है.
1: सर, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो किया, पूरा देश उस पर गर्व करता है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. आपने देश के लिए जो भी किया, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आपको अब एक तरह से राम लला का सानिध्य भी है. एक बड़ा रोल तो है ही है, लेकिन कहते हैं कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक बड़ा सानिध्य रामचंद्र का है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: इसको मैं अपना भाग्य मानता हूँ और अपने आप को मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 43 वर्ष राष्ट्र सेवा में मैंने लगाए, 17 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक भारतीय वायुसेना में, और आज मुझे श्री प्रभु श्री राम की कृपा से श्री राम मंदिर और श्री राम भक्तों की सेवा का अवसर भी प्रदान हुआ है.
1: सर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है? आपने परिवार वालों से बातचीत की होगी?
2: जी, ईश्वर का आदेश है, इसमें सभी को असीम प्रसन्नता है. मेरे माताजी को, मेरी बाकी फैमिली को, मेरे बच्चों को, सब बहुत ही प्रसन्न.
1: सर, 5,500 से ज्यादा आवेदन हुए थे इस प्रक्रिया के लिए और उनमें से आपको चुना गया. हालांकि जो आप करके आए हैं वो बहुत बड़ी चीज है, देश सर्वप्रथम है, लेकिन उसके बाद भी 5,500 में से आपके एक नाम को चुना गया है. आखिरी के जो 3 नाम थे वो भी बहुत अहम थे. ट्रस्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है, लेकिन उनमें से जब आपको चुना जाता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरीके से आप प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किस तरीके से काम करेंगे आप मंदिर में?
2: जी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ चयन समिति का. उनका जो चयन का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरा चयन शायद किया होगा.
3: यू आर एंटरिंग द इंडिया टुडे स्टूडियो प्रेजेंटेड बाय LIC.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Look at the irony. At the SCO summit in Bishkek, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif begged for water. But a day later, when the rain gods fulfilled his wishes, almost the entire power center of Pakistan got submerged. These are the scenes from Islamabad and Rawalpindi. 4 to 5 feet of water in several areas. Cars floating down flooded streets. Homes inundated. Possessions destroyed. 3 people killed and residents left counting their losses.
1: ये बेड है, ये मैं मल्ले में से मांग के लाया हूँ। ये चरपाई मैंने सामने बंदों से मांगी है कि यार मुझे चरपाई दे दो, खाली बैठने की जगह दे दो। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ये देखें, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ये आपको घर के अंदर की मैं तो आपको सारी जाना कराता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो भी ये देखे, ये डूब गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से कि नालों की सफाई नहीं हो रही और मसाइल दुनिया के हाल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज मैं खुश हूँ।
0: हैवी रेनफॉल ओवरवेल्म्ड रावलपिंडी'स ड्रेनेज सिस्टम। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑर्डर्ड शट as authorities struggled with the flooding. In places, cars are being carried away like toys. Elsewhere, vehicles are almost completely submerged. Roads have turned into streams. Drains and streets have virtually become indistinguishable.
1: यार ये हमारे साथ है ना, ये हम पाकिस्तान में ये सलूक में हमारे साथ हो रहा है। मैं आप कहते पता नहीं, स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी करूं। मैं फरियाद करूं अपने हुक्मरानों के सामने कि इधर आओ और इस मसले को हल, कौन मसले है, इन मसाइल को कौन हल करे।
0: पाकिस्तान वॉन्टेड मोर वाटर, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद गॉट इट। एज दे से, when it rains, it pours. Bureau Report, India Today.
2: The problem with Pakistan is poor management, corruption, and that they haven't invested in infrastructure. They choose to blame India instead, and the generals keep enriching themselves. But from Pakistan, I want to shift focus to Nepal. They fought very hard to recover. It's a country you can be very proud of. You can be very proud of their people, the resilience the people of Nepal have shown. The flood disaster, it's left a landscape of mud, rubble, unimaginable losses. Once bustling towns, they were either virtually wiped out or they bear very difficult scars of a devastating flood. Homes have been swept away, buildings have been swept away, roads have been destroyed, bridges have been destroyed. People are now desperately searching for their loved ones. Amidst all of this, there is an apprehension that there could be another deluge. Now, there are reports and very disturbing reports that people are actually performing last rites with recovered mortal remains, fearing that some of their loved family members may never return. India Today's Ashutosh Mishra, our man on ground, brings us, he's traveled to some of the most difficult areas and he's brought us this report. Take a look.
3: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है, और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही, थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए, लेकिन मलबे की ऊंचाई जो पूरा इलाका बताता है कि तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है। भटपोशी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई है, जो उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, और अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस त्रासदी में कितने लोगों ने जान गंवाई है। नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं, और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं, और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गांव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, मदद के लिए उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे। देखिए, पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है, और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं।
4: Incredible courage display in Nepal as I see people are being evacuated from the areas which were totally disconnected. Look at this. Right over the scary flow of Trishuli, the ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli, in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago, when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away. And now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the rope bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how these operations being carried out.

0: 6 years after Sushant Singh Rajput's manager Disha Salian's mysterious death, there is a fresh twist. The Bombay High Court has ordered a CBI probe after flagging what it calls certain suspicious circumstances in the investigation. The court says the police probe raises more questions than it answers. The loophole include delayed spot panchnama, unexplained police presence at the flat, questions of a reported bleeding and the absence of blood-stained earth. The Bombay High Court also questioned the nature of Disha's injuries, noting that a fall from such a height did not result in fractures to the jaw or nasal bone. It added that the police suspected Disha's friend Rohan Rai, but they did not conduct the spot panchnama. The court has asked a senior CBI official to be appointed for investigation. The ruling says nobody will be treated as accused until reasonable offence is found. If a case is not made out and case is filed, the petitioner can appeal.
1: कोर्ट ने इनका पूरा झूठ पकड़ लिया. पहली चीज, इसमें उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट बनाए थे सब झूठे पाए गए. इन्होंने खुद जो सीसीटीवी प्रोड्यूस किया उसमें भी इनका सुसाइड थ्योरी झूठा साबित हो गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी. तो इतना बोगस इन्वेस्टिगेशन, इनको लगता गरीब है तो हम कुछ भी कवर कर लेंगे. ये ऐसा नहीं होता है.
0: Disha's father Satish Salian has welcomed the CBI probe.
2: आपको कब ये चीज में कन्विंस हुआ कि कहीं ना कहीं कोई दोषी है, कोई आरोपी है? पहले इसको सुसाइड केस बताया जा रहा
3: था. दोषी तो रहेगा, दोषी के बिना थोड़ी होएगा, मर्डर होएगा, ऐसा है.
2: खुश है आप इस फैसले से?
3: हां जरूर जरूर, 100%.
0: The Disha Salian case has also become a political battlefield. Her father had earlier alleged a link to Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray. Allegations Thackeray has denied. BJP MLA Ram Kadam has welcomed the court order, while NCP SP leader Supriya Sule has dismissed the renewed questions, saying she believed the matter was already over.
4: सवाल ये उठता है कि उस दौरान की उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? रातों रात इस मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? अब इस सारे प्रकरण की जांच CBI करेगी और मुकदमा दर्ज होगा.
5: I have no idea because to the best of my knowledge that case was over. I have no idea. I'll have to check and get back to you on that.
0: Years have passed. The questions have remained. Now the CBI has been asked to find the answers. Because for Disha Salian's family, this is no longer about allegations or politics. It is about knowing what happened to their daughter. With Mustafa Sheikh and Vidya, in Mumbai, Bureau Report, India Today.
6: And joining me now is Satish Salian, father of Disha Salian, joins me along with advocate Nilesh Oza, who's the counsel for Mr. Salian. Good to have both of you on the show. Satish Salian ji, for the last few years, pichle kuch saalon se, aap apni beti ke liye lad rahe hain. You claimed ki सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि आप नहीं मानते हैं कि आपकी बेटी सुइसाइड की वजह से उनकी मौत हुई. क्योंकि अभी तक जितना भी एविडेंस पुलिस ने गैदर किया उसके मुताबिक उनका कहना यह सुइसाइड का केस था. देर वॉज नो फाउल प्ले. आप किस दृष्टि से आज के कोर्ट के इस निर्णय, इस ऑर्डर को देखते हैं कि उन्होंने कहा है सीबीआई की केस होनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं?
7: मैं सबसे आज का दिन जज ने जो दिया है सही दिया है.
6: क्योंकि कोर्ट ने साफ किया है दैट नो वन कैन बी अक्यूज्ड एट दिस स्टेज. इस फैसले, इस समय किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते. इस समय किसी के खिलाफ ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे यह पता चलता है कि पूरी तरह से फाउल प्ले है. कोर्ट ने कहा है नो वन शुड बी considered accused at this stage. How do you see it?
7: अभी तो कुछ नहीं बोल सकते. जब भी सीबीआई रिपोर्ट आएगा तभी बोल सकते हैं.
6: नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ओजा जी, how do you see it? आप लॉयर हैं, how do you see it? Because the court has made it very clear. साफ कहा है कि उन्होंने there was इस समय यह कहना कि फाउल प्ले है यह गलत होगा. यस, देयर वर सम वीकनेसेस इन द इन्वेस्टिगेशन, therefore they are ordering this. But how do you see today's order? Kis tarah se aaj ki order ko aap dekh rahe hain?
8: Nahi, shayad order padha nahi theek se. Court ne foul play paya, isiliye CBI ko transfer kiya investigation aur pure grounds diya ki kahan kahan foul play hai. कहां कैसा सीसीटीवी में दिख रहा है वो स्टोरी अलग है और ये स्टोरी अलग है. कैसा उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोर्ट ने डिसबिलीव किया है, कैसा पुलिस का एडीआर पे डिसबिलीव किया है. तो कोर्ट ने उनका फाउल प्ले पाया, उनका दोनों रिपोर्ट ये लीगली एडमिसिबल नहीं था करके तो नया एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दिया है. एक चीज
6: सर, कोर्ट ने
8: दूसरी चीज
6: सर सर सर कोर्ट ने किसी का नाम
8: नहीं
6: लिया
8: कि कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रजिस्टर होगा इनके स्टेटमेंट पे. इनके स्टेटमेंट में जो भी सस्पेक्ट जो भी लोग हैं उनके नाम आएंगे. आदित्य ठाकरे एंड अदर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगा, गैंग रेप और मर्डर के सेक्शन में रजिस्टर होगा. कोर्ट का कहना है कि जिनके खिलाफ में एविडेंस मिलेंगे उनके खिलाफ में उनको अक्यूज बनाइए, प्रोसीड कीजिए. जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है
6: ओजा जी,
8: मत बनाइए.
6: ओजा जी, कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया है. आप आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, कोर्ट ने कहीं आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, ये आप ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेंगे, सीबीआई के साथ सीबीआई को मदद करेंगे और उसके बाद तय होगा क्या इस केस में कोई फाउल प्ले है या नहीं. ये बाद में प्राइमा फेसी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कोई आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है. ये बड़ा सेंसिटिव केस है, किसी का नाम ऐसे कैसे आप ले सकते हैं कि आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है. कोर्ट ने तो नहीं कहा उनका नाम, आप कह रहे हैं.
8: पूजा जी सुनिए, आपने ऑर्डर फिर से नहीं पढ़ा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं. कोर्ट ने कहा है इनके स्टेटमेंट पे एफआईआर रजिस्टर होगा. तो एफआईआर जब रजिस्टर होता है, जब इनके जो नाम दिए गए तो नाम कोर्ट थोड़ी देगा, ये नाम देंगे. आपको इतना बेसिक प्रोसीजर भी नहीं पता?
6: नहीं,
8: नाम ये देंगे, उसके बेस पे एफआईआर रजिस्टर होगा. आप नहीं, हमारा पहले से आपके ऊपर यही आरोप है, आप एक एजेंडा लेके चलते हो. आप आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को ग्लोरीफाई करने के लिए आप
6: मैं किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं. ओझा जी, आज की तारीख में आपने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, उनको तो बरी किया गया है. आप कह रहे थे कि वो मर्डर में शामिल थी, उनको तो सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है, यस और नो? आप आदित्य ठाकरे आपके खिलाफ आप कह रहे हैं कि इस समय तक कोई सबूत तो नहीं है, एक इन्वेस्टिगेशन अब होगा. आप अच्छी तरह से कानून जानते हैं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आज के ऑर्डर के बाद आदित्य ठाकरे पर एक उंगली आप उठा रहे हैं एक बार फिर.
8: कौन से सबूत देख लिए पहली चीज, और झूठा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो आप? रिया चक्रवर्ती को बरी हुई कहा है? सीबीआई की रिपोर्ट आई है, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है. आरुषि तलवार में सीबीआई की रिपोर्ट के बाद में भी अरेस्ट वारंट निकला था. दूसरी चीज, रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस में आज भी आरोपी है. तो हमारे आरोप आपके खिलाफ बिल्कुल सही है, आप सिर्फ वो दोनों के एजेंट बोल के काम करते हो, यही हमारा आरोप.
6: मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, ये सब मत यूज कीजिए. मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ. मैं जो कह रहा हूँ सर, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि उनको फाउल प्ले है. उन्होंने कहा है कि पुलिस नीड्स टू, देर वॉज सर्टन गैप्स इन पुलिस प्रोब दैट दे हैव रेज क्वेश्चंस ओवर, लेकिन ये नहीं कहा है कि फाउल प्ले हुआ या मर्डर हुआ है. ये तो देर इज अ फर्क ना. कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि देर इज अ मर्डर ऑफ दैट दिशा सालियान को मर्डर किया गया, जो आपका आरोप है.
8: बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत कह रहे हो. यस,
6: अब मैं गलत कह रहा हूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं इसमें सालियान जी? मैं क्या गलत कह रहा हूं आप बताइए. सालियान जी आप बताइए, आपको विश्वास है कि सीबीआई के हाथ में अब इंक्वायरी है, जो भी सीबीआई कहेगी, अगर क्लोजर रिपोर्ट हुआ कि किसी को दोषी नहीं पाया गया तो क्या आप मानेंगे सीबीआई की रिपोर्ट को? क्या आपको उसमें विश्वास होगा, या किस आपको सीबीआई में विश्वास है या नहीं है सर? सालियान जी, विश्वास है ना?
8: लेकिन उसमें कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी लिखा है कि अगर आपको लगा सीबीआई की रिपोर्ट सही नहीं तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं. आप ऐसे घुमा के ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, आपका मन का सेटिस्फेक्शन करने के लिए राजदीप जी?
6: नहीं सर, कानून के मुताबिक मैं जा रहा हूं, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी. आप तो खुद लॉयर है, आप आज की तारीख में कह रहे हो द वर्ड फाउल प्ले, जो मैंने वर्ड यूज किया, कहीं ये नहीं कहा गया दैट देयर वाज फाउल प्ले. They have questioned the investigation of the police but not said फाउल प्ले मेरे सामने ऑर्डर है, आप मुझे बताइए. देर इज नो प्रूफ एज येट ऑफ फाउल प्ले, दैट्स ऑल आई एम सेइंग सर. इतना तो आप मानते हैं कि नहीं ओझा जी?
8: अच्छा अच्छा, सुनिए आपने फिर से एक बार फिर से लॉ पढ़िए, मैं आपको केस लॉ के साथ बताता हूं. नंबर वन, जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेंट करने जाता है तो कंप्लेनेंट यही लिखेगा कि ये मेरे प्रूफ है, ये पर्सन अक्यूज्ड है, इसके खिलाफ में मेरे ये चार्जेस है. वन थिंग. दूसरी yes. चीज, कोर्ट को मतलब राजदीप सरदेसाई को जो वर्ड अच्छे लगते हैं वो कोर्ट को लिखना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा आप अच्छे से ऑर्डर पढ़िए, पुलिस को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो उसमें फेल हो गए हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन वैसा भी यूजलेस. अच्छा मुझे इतना बताइए, अगर फाउल प्ले कुछ है नहीं तो कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों ऑर्डर किया?
6: ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी. आप कुछ कह रहे हैं कि रेप और मर्डर हुआ था, मुंबई पुलिस कह रही है इट वॉज अ केस ऑफ सुइसाइड. अब तो पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हैव अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सही है कि नहीं?
8: पुलिस ने अगर अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, 50 जजमेंट है कि अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन फेयर है तो कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करता है. जब यहां सीबीआई को और एक मिनट, आप पैरा नंबर पढ़िए, चलिए पैरा नंबर 34 पढ़िए. सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ऑफिसर दिशा के जो उनका एलिस्ट टाइम है 1:30 बजे का मरने का, उसके आधा घंटा पहले पुलिस वहां पर पहुंच गई है. एडीआर झूठा बनाया पुलिस ने, उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट ने कहा कि ये हम इस पे विश्वास नहीं रख सकते हैं. उन्होंने वजनल स्वैप को चेंज करके वजनल स्मेयर किया. मतलब इतने प्रूफ होने के बाद में भी आपके दिल से आपके वो आदित्य ठाकरे की भक्ति जा नहीं रही है, तो ऐसे अनफेयर पर्सन के साथ सॉरी सॉरी सॉरी. और एक वन मोर थिंग राजदीप जी सुनिए, मैंने इंटरव्यू के पहले भी बोला है, हमने एफिडेविट पे कंप्लेंट में सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी में आपको भी अक्यूज बनाया है. आपने उनको ग्लोरीफाई करने का काम किया, इसलिए हम आपके चैनल पे नहीं आ रहे थे. और आज आपने साबित कर दिया कि आप वही हो, और अब मिलते हैं हम कोर्ट में आपसे. डोंट वरी
6: सर, आई विल मीट यू इन कोर्ट. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस सर, ओझा जी एंड सालियान जी, आई एम सिंपथेटिक टू योर लॉस, बट आई एम अ जर्नलिस्ट हियर. आई एम नॉट हियर टू रन सम कैंगरू मीडिया ट्रायल मिस्टर ओझा. आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, इस समय हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जिस तरह से आप यहां आकर ठहरा सकते हैं. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको. उसके आगे में नहीं जा
8: रहा हूं. लेकिन आप उसको क्लीन चिट क्यों दे रहे
9: हैं? मैंने
6: क्लीन चिट कहा
9: दी? मैंने कहा कोर्ट ने ये नहीं कहा है देयर इज फाउल प्ले. कोर्ट ने कहा सीबीआई इसकी जांच करेगी.
8: सुनो, अगर आपका ये इंटरप्रिटेशन है तो हमको आपके सामने कोई बात नहीं करनी. आप आपका चलने दीजिए, आपका कंफ्यूजन आपके पास में. हम लोग जस्ट फेयर लोगों के साथ में हम उसको इंटरव्यू देते हैं जो स्ट्रॉमन फैलेसी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और सोफेस्ट्री वाले लोग हैं. हम उनके साथ उनके पास में स्टेटमेंट नहीं देते. जय हिंद, वी आर लिविंग.
6: थैंक यू. यू वॉन्ट टू गो अपेयर. थैंk यू नीलेश ओझा, मिस्टर सालियान. Thank you very much for joining me. I want to get a sense, therefore, as you saw, this is a getting acrimonious that was recorded earlier. Majid Memon, senior advocate, Supreme Court, is joining us, former member of parliament also. Majid Memon, how do you see what we just heard? The lawyers of Satish Salian are claiming victory based on the fact that there will now be a CBI probe. He's saying now Aditya Thackeray will be booked. Do you believe that what the court has done today should lead us to that conclusion or not?
10: Well, this development must be said to be partial success for the father of the deceased, who has moved the court, suggesting that the investigation conducted so far by local police was partisan, and they were trying to probably cover up something, maybe because of certain political influence. That is what his apprehension has been. The court has passed an order asking CBI to register FIR, but at the same time, court has also forewarned CBI not to name any accused person at the commencement stage until some positive, satisfactory evidence is emerging against anybody for involvement in a serious crime like murder and rape.
6: Let me get that clear. There's a Mumbai police case which was investigated 6 years ago. Disha Salian committed suicide in July of 2020. We are now in August 2026. In that case, the police said they found no foul play. Now, there will be a CBI inquiry that takes place. Presumably, there will be an FIR that has to be registered. If the FIR is registered, is it registered against unnamed persons or is it registered against specific persons? Is the father entitled to name, let's say, an Aditya Thackeray in that FIR? Or as the court made it very clear, no one can be accused at this stage?
10: Correct. The FIR is going to be registered consequent upon the High Court's directions against unknown persons. And then they would start commencing collecting evidence. But I have my own reservations that a case which is the incident which is more than 6 years old, what new evidence are they expected to get? They may re-examine the postmortem and medical report of the victim girl, because if the accusations are of rape also and murder, then naturally there has to be some reflection as far as the examination of body is concerned. In this case, it is alleged that the petitioner, the father of the victim girl, has alleged that the postmortem was kept away from him and he had no access to that. If that is so, I think that it's something serious, and let him have the access to postmortem report and let his statement also be recorded as the direction of the High Court goes. But you see, I doubt whether anything will turn out to turn this case upside down from a simple case of suicide to the case of murder and rape, notwithstanding any political connections with the in the background as far as
6: unless of course it is proven that the police had hidden certain material evidence. Am I correct? That's what it's boiling down to. Did the police, Mumbai police, hide certain material? If they hid it, then new facts can come. But in the absence of those facts, you just heard the lawyer of Disha Salian's father virtually claiming that the court has said that there were suspicious circumstances, and therefore he believes that they are right in claiming that this was a case of rape and murder. Would that be a wrong interpretation of the court order?
10: Rajdeep, it is something extremely serious and very difficult to digest. That why did the father of victim girl have to wait for 6 years? He ought to have rushed to the court for this same prayer or for this no confidence on the investigating agency in the very first month or first couple of months of the investigation, before the investigation would have concluded and before they would have filed any report of suicide and closing the case, etc., and waiting for such a long time. You see, evidence tends to evaporate. Evidence does not remain easily accessible if there is a long lapse of time. Which, of course, if you are commencing investigation for an incident which had occurred in June 2020, you are not likely to get anything leading to truth, because your investigation is a quest for truth. And now it is very difficult for them to build up a case and turn it from suicide to rape and murder. And
6: but the worry, Mr. Memon, and you've been a politician as well, that this case takes a political twist. You see, that's the concern. A case which started off as, you know, everyone wants justice for Disha Salian. We want her father to know the truth, her family to know the truth. But because there is so much of politics around it, the worry is that the truth gets colored by the politics. Depending on which side you are, you either say it's a case of suicide or it's a rape and murder. No one is looking at the facts of the case.
10: You see, in legal criminal jurisprudence, there is a vast difference between a case of suicide or a case of murder. Because you see, the evidence required to even build up a case of murder has to be quite strong. It can't be simply on conjectures and gestures or apprehensions of somebody who may have some kind of a grudge or some kind of feelings against X, Y, or Z. Therefore, to build up a case of murder after 6 years, I think it will be an uphill task for CBI, even if they do their best in their skilled investigators. And we only hope that Disha must get justice. See, if there is any political touch in this case, then that also has to be exposed at all costs. And it is not that in past several issues, several such cases where the investigation has been transferred from local police to CBI, the upside down truth has come down. And one does not know in this case how things are going to take place.
6: I'll leave it there. I'll leave it there, Mr. Memon. But I am glad that you've given us some context to the way this case has played out. Appreciate you joining us on this important case. All we want is it shouldn't be a media trial. Remember what happened with Sushant Singh Rajput, the manner in which the media trial was conducted against Riya Chakravarti. Eventually, the CBI filed a closure report and said there was no evidence at all of any foul play. That's all that we can say. Those are the hard facts in the case of Sushant Singh Rajput. In Disha Salian's case, we'll wait to see what the CBI says in that case. Okay, let me turn from there to our other big story. Because now there is a twist to the Nepal story. The flood tragedy that has claimed more than 1,200 lives, with accusations that China could also have had a role in, that the Chinese have hidden the number of deaths that have taken place in Tibet. I'm going to come to that in a moment. But first, our ground report. Because a week after the floods ravaged Nepal, the search for the missing continues. Thousands, remember, are still unaccounted for. More than 4,000 are missing. Families are scouring remote mountain areas for loved ones as rescue teams battle treacherous terrain to reach the survivors. Ashutosh Mishra now reports.
0: It has been a week since the devastating floods hit Nepal and the race against time. Over 1,100 people have died in the tragedy, and rescue operations are underway to find nearly 4,000 people who remain missing. In Nuwakot, people have reached the remote mountainous areas in search of family members who remain missing. The rescue base is covered with photographs of people whose whereabouts are still unknown.
11: ये भाई के पास अपने परिवार के एक सदस्य का तस्वीर है जिसमें हाथ में अंगूठी है क्योंकि शव पूरा नहीं मिला है इसलिए वो उस शव के हिस्सों को देखकर के पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाथ में वो अंगूठी दिख जाएगी नाम जिंदा बचाए लोगों में नहीं मिलता लेकिन ये भी नहीं पता वो कहां है और अब उनके हाथ में दी जाती हैं वो तस्वीरें जिसमें मरने वाले लोगों के बारे में जानकारी है उनसे जुड़े कुछ तस्वीरें हैं हिस्से हैं शरीर के
0: एट द चिली में हाइड्रो पावर प्लांट द इंडियन टनल रेस्क्यू टीम हैज मैनेज्ड टू मूव डीपर इनटू टनल्स डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस एंड अ मार्शी फ्लोर More than 160 Indians have been rescued. A 13-member team from the Crisis Response International in the US has reached Nepal to help with rescue operations at hydropower tunnel sites.
12: Today we are hoping to get on a helicopter and go into a hydro tunnel and I'll be leading a team of locals. The army and the police are doing an incredible job. The Nepali people are incredibly resilient and they're doing an amazing job at rescues and we get to be a part of serving them today. Yeah, the hardest thing is the people in trauma. There are families here that lost their lives and that is extremely hard.
0: India has sent a fifth relief aircraft to Nepal. The aircraft carried 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines.
13: हम वृद्ध आश्रम से हैं हम 40 लोग हैं वहाँ पर हमारा वृद्ध आश्रम में हमारा वास था और कुछ लोग बीमार भी थे कुछ लोग खाना खाने के लिए सब नीचे उतर गए थे बाढ़ आ गया चलो चलो चलो निकल जाओ हमको तो यकीन ही नहीं है कैसे आएगा यहाँ पर कैसे आएगा बाढ़ कैसे आएगा कैसे पहुँच जाएगा यहाँ तो कुछ नहीं होगा हमको ये लगा
0: The road access to the core area of the mudslide hit Gairong Port in southwest China's Xizang Autonomous Region has been restored after days of round-the-clock repair work. The Nepal government has urged the world for help, and many nations, including India, are helping. But Nepal needs more aid, assistance, and prayers. With Ashutosh Mishra, Nepal, Bureau Report, India Today.
6: Okay, let me go to my first guest on that because, as I said, there is now growing concern that Tibetans are expressing that the number of Tibetans missing in the flash floods, the numbers are not coming out because China is not revealing them. Lobsang Sangye, joining me now. He is the former Prime Minister of the Tibetan government in exile. Appreciate Mr. Sangye, you joining us. Tell us, this Himalayan tragedy, thousands of people dead in and around Nepal. There are concerns that you and others are expressing that many people have died in Tibet, but the numbers are being played down by Beijing. What can you tell us about the casualties inside Tibet at the moment?
14: Yeah, we see that there's a lot of damages have occurred in Tibet, and at least if not 200, at least 100 plus Tibetans have died. This we know from the office itself. There are a lot of staff members which is the biggest airport. But the Chinese government has shut down the internet, and we don't have access to the local people. Well, fortunately, the first 24 hours we did get access. But since then, they have shut it down. This is a classic Chinese government move. Whenever there's a protest in Tibet in a village or two, first thing they do is shut down. The fact that they are not allowing journalists to go to that area, or UN inspectors to go to the area, or hydro experts to go to the area, clearly indicate that they're hiding something.
6: So you're telling me you've had no communication with people in Tibet, in Lhasa at all after the first day, to gather just the scale of the damage. Are you saying that at this stage you've not been able to establish any kind of contact since the first day when the floods took place there?
15: Yes, the first 24 hours we could get access, through people in Nepal and through the border areas. And after 24 hours, internet is shut down. There is no access. So Chinese government is definitely hiding something.
6: You're saying that the Chinese government is hiding something. That's a very serious charge you're making. You're telling me that China is not telling the full truth of what happened on the Chinese side during these flash floods.
14: Yeah, and there's nothing surprising. Remember the pandemic happened, right? COVID, the origin of the COVID, still what happened still is in China. The Chinese government is not sharing the data, even with WHO. More than 7 million people died all over the world. $20 trillion damages have caused to the whole world, but it's not the origin of COVID.
6: In a recent interview also, Mr. Sangye, you've said that the Chinese government must be held accountable for these flash floods. Now, the belief is this was a glacial icebreak, probably, that led to the floods. It's a natural disaster of unprecedented proportions. But can that be blamed on the Chinese? Why are you blaming the Chinese government for this natural disaster?
15: Yes, natural disaster can be triggered by artificial action or human action. And a lot of roads are being built in that area. And the railway line is being built. That is the biggest, dry port that they're building. And clearly all this drilling, that's happening in the mountainous area, it causes tremor. And the glaciers break because there was a tremor. And that's why, there can be, a direct relationship between the break up the glaciers and the damage it caused downstream. And then particularly, where is the alert system? The Chinese government is supposed to have whole army, the whole satellite to navigate, the glaciers and the glacial lakes.
6: So you're saying that the kind of construction activity, the hydropower plants, the highways that the Chinese government is carrying on this in this region is making them far more, is making this Himalayan ecosystem on the Chinese side far more vulnerable to these kind of disasters. Am I correct?
15: Yes. That area has the biggest construction of both highways and a railway.
6: But is one of the real concerns also that there is so little coordination or communication between Beijing, Kathmandu, and New Delhi? So therefore, everyone seems

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: बेटा सचिंदर
1: द गर्ल नेक्स्ट डोर चार्म इज गॉन
0: कानी मट्टे ओणिकी पोयिंदि ना बिड्ड रक्तानि दासलेक काले आगिपोयिंदि ना बिड्ड ऊपिरिनि मोयलेक
1: द कॉय स्माइल हैज फेडेड and its place stands a woman forged by fire.

0: Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif begged for water. But a day later, when the rain gods fulfilled his wishes, almost the entire power center of Pakistan got submerged. These are the scenes from Islamabad and Rawalpindi. 4 to 5 feet of water in several areas. Cars floating down flooded streets. Homes inundated. Possessions destroyed. 3 people killed and residents left counting their losses.
1: ये बेड है, ये मैं मल्ले में से मांग के लाया हूँ। ये चरपाई मैंने सामने बंदों से मांगी है कि यार मुझे चरपाई दे दो, खाली बैठने की जगह दे दो। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ये देखें, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ये आपको घर के अंदर की मैं तो आपको सारी जाना कराता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो भी ये देखे, ये डूब गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से कि नालों की सफाई नहीं हो रही और मसाइल दुनिया के हल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज मैं खुश हूँ।
0: हैवी रेनफॉल ओवरवेल्म्ड रावलपिंडी'स ड्रेनेज सिस्टम। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑर्डर्ड शट as authorities struggled with the flooding. In places, cars are being carried away like toys. Elsewhere, vehicles are almost completely submerged. Roads have turned into streams. Drains and streets have virtually become indistinguishable.
1: यार ये हमारे साथ जो है ना, ये हम पाकिस्तान में ये सलूक में हमारे साथ हो रहा है। मैं आप कहते पता नहीं, स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी करूं। मैं फरियाद करूं अपने पुरानों के सामने के इधर आओ और इस मसले को हल, कौन मसले है, इन मसाइल को कौन हल करे।
0: पाकिस्तान वॉन्टेड मोर वाटर, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद गॉट इट। एज दे से, when it rains, it pours. Bureau Report, India Today.
2: The problem with Pakistan is poor management, corruption, and that they haven't invested in infrastructure. They choose to blame India instead, and the generals keep enriching themselves. But from Pakistan, I want to shift focus to Nepal. They fought very hard to recover. It's a country you can be very proud of. You can be very proud of their people, the resilience the people of Nepal have shown. The flood disaster, it's left a landscape of mud, rubble, unimaginable losses. Once bustling towns, they were either virtually wiped out or they bear very difficult scars of a devastating flood. Homes have been swept away, buildings have been swept away, roads have been destroyed, bridges have been destroyed. People are now desperately searching for their loved ones. Amidst all of this, there is an apprehension that there could be another deluge. Now, there are reports and very disturbing reports that people are actually performing last rites with recovered mortal remains, fearing that some of their loved family members may never return. India Today's Ashutosh Mishra, our man on ground, brings us, he's traveled to some of the most difficult areas and he's brought us this report. Take a look.
3: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है, और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही, थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए, लेकिन मलबे की ऊंचाई जो पूरा इलाका बताता है कि तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है। भटपोशी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई है, जो उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, और अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस त्रासदी में कितने लोगों ने जान गंवाई है। नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं, और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं, और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गांव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, मदद के लिए उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे थे। पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है, और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं।
4: Incredible courage display in Nepal. As I see, people are being evacuated from the areas which were totally disconnected. Look at this. right over the scary flow of Trishuli. The ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli, in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago, when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away. And now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the road bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how this operation is being carried out.

0: Look at the irony. At the SCO summit in Bishkek, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif begged for water. But a day later, when the rain gods fulfilled his wishes, almost the entire power center of Pakistan got submerged. These are the scenes from Islamabad and Rawalpindi. 4 to 5 feet of water in several areas. Cars floating down flooded streets. Homes inundated. Possessions destroyed. 3 people killed and residents left counting their losses.
1: ये बेड है, ये मैं मल्ले में से मांग के लाया हूँ। ये चरपाई मैंने सामने बंदर से मांगी है कि यार मुझे चरपाई दे दो, खाली बैठने की जगह दे दो। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ये देखें, ये हर चीज नुकसान है, लेकिन मैं आज जो हूँ ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं ये आपको घर के अंदर की मैं तो आपको सारी जाना कराता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल जो है वो भी ये देखे, ये डूब गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इस नाली की वजह से कि नालों की सफाई नहीं हो रही और मसाइल दुनिया के हल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आज मैं खुश हूँ।
0: हैवी रेनफॉल ओवरवेल्म्ड रावलपिंडी ड्रेनेज सिस्टम। स्कूल्स एंड कॉलेज

0: Villages were ordered shut as authorities struggled with the flooding. In places, cars are being carried away like toys. Elsewhere, vehicles are almost completely submerged. Roads have turned into streams. Drains and streets have virtually become indistinguishable.
1: यार ये हमारे साथ है ना, ये हम पाकिस्तान में ये सलूक हमारे साथ हो रहा है। मैं आप कहते पता नहीं, स्विट्जरलैंड का स्विमिंग पूल नहीं है, ये एक नापाक पानी है जिसके अंदर मैं खड़ा होके और अपनी फरियाद दर्जी करूं। मैं फरियाद करूं अपने पुरानों के सामने कि इधर आओ और इस मसले को हल, कौन मसला है, इन मसाइल को कौन हल करे।
0: पाकिस्तान वॉन्टेड मोर वाटर, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद गॉट इट। एज दे से, when it rains, it pours. Bureau Report, India Today.
2: The problem with Pakistan is poor management, corruption, and that they haven't invested in infrastructure. They choose to blame India instead, and the generals keep enriching themselves. But from Pakistan, I want to shift focus to Nepal. They fought very hard to recover. It's a country you can be very proud of. You can be very proud of their people, the resilience the people of Nepal have shown. The flood disaster, it's left a landscape of mud, rubble, unimaginable losses. Once bustling towns, they were either virtually wiped out or they bear very difficult scars of a devastating flood. Homes have been swept away, buildings have been swept away, roads have been destroyed, bridges have been destroyed. People are now desperately searching for their loved ones. Amidst all of this, there is an apprehension that there could be another deluge. Now, there are reports and very disturbing reports that people are actually performing last rites with recovered mortal remains, fearing that some of their loved family members may never return. India Today's Ashutosh Mishra, our man on ground, he's traveled to some of the most difficult areas and he's brought us this report. Take a look.
3: यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी सड़क मार्ग नहीं है और उन इलाकों में जो एकदम पतले रास्ते हैं वहाँ पर आप सिर्फ दो पहिया रास्तों के जरिए ही, थोड़ा ये जोखिम भरा इलाका है। लेकिन अब ये देखिए, ये जो सारा मलबा इसलिए क्योंकि कुछ रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है सड़कों को फिर से सही करने के लिए, लेकिन मलबे की ऊंचाई और ये पूरा इलाका बताता है कि तबाही की तस्वीर कितनी भयानक है। भटकोशी अपने साथ जो तबाही लेकर के आई है, जो उसमें जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर इस त्रासदी में कितने लोगों ने जान गंवाई है। नेपाल में आई आपदा में लोगों को बचाव के लिए कई सारे लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद जो हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े आए हैं, और सोनू सूद भी नेपाल पहुंचे हैं और इस समय रसुआ के पास, जब रसुआ के रास्ते में नुआकोट के सबसे आखिरी गांव में सोनू सूद अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं मदद के लिए। उन इलाकों का जायजा ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव कार्य के लिए सोनू सूद अपने फाउंडेशन के साथ इस इलाके का जायजा ले रहे। देखिए, पूरा का पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो चुका है और अब वो उन इलाकों में जा रहे हैं। Incredible courage on display in Nepal as I see people are being evacuated from the areas which were totally disconnected. Look at this. Right over the scary flow of Trishuli, the ropeway has been built by the locals, the administration, and now the people, those who were stranded for more than a week, are being evacuated with this extreme uphill task, mountain task exercise in Trishuli, in the hostile terrain. These people have faced the trauma of nearly a week, exactly a week ago when the mayhem started. This whole area was devastated. Massive giant bridges were washed away. And now these people who were literally stuck and locked in an area being evacuated with the rope bridges. Remember, reopening the roads, that remained absolutely challenging task. And now the administration, these volunteers, the young people are carrying out these operations by themselves. The people, those who have been literally disconnected from their villages, the families are being reunited. Look at this. This is how these operations being carried out.